सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.
1: जदों लग्या तेनू विश्क दरों

सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास। अब सुनिए ओलिव का जबरदस्त है।

0: एंटरटेनमेंट की या कोई सीमा नहीं, बनाइए अपने मॉर्निंग को बिंदास मॉर्निंग। बिंदास मॉर्निंग हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम जियो बिंदास।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग।
2: It's the season of jewelry and the season of offers at Malabar Gold and Diamonds. Diamond and precious gem jewelry purchase per pie, free cash vouchers.
3: In association with Choose Bima, third part of liability today. Stay claim free to enjoy 7% cash back. Visit bima.com.qa. Bima for your peace of mind. TNC apply.

रात को जो है देरी हो जाती है सोने में, तो सुबह जब अलार्म बजता है तो मन से यही आवाज निकलती है कि दिल गलती तो देखो कर बैठा है, कल जल्दी सो जाते तो आज जल्दी उठ पाते। हाँ जी, आपकी कूल सी छोरी, आपकी कशिश जो है आ गई आपके लिए लेकर बिंदास मॉर्निंग, जहां पर आपकी बोरिंग बेसिक मॉर्निंग्स को जो है बिंदास बनाने का बीड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने अपनी नाजुक कंधों पर उठा लिया है। एंड अपनी नाजुक कंधों को लेकर मैं ऑफिस भी आ चुकी हूँ सुबह सुबह यहाँ पर। एंड मुझे ऐसा लगता है कि सुबह मैं जो है ना बोलूं तो ही बेहतर है, क्योंकि मेरी आवाज कशिश की नहीं किसी कमलेश की जो है वो लग रही होती है। तो अगर कोई कमलेश हमें सुन रहा है इस वक्त, तो प्लीज मुझे जो है जरा ऑडियो नोट भेजिए, मुझे अपनी आवाज आपकी आवाज से मैच करनी है। बाकी आज जो है क्या कुछ जो है खास होने वाला है पूरे दिन में उस पर बात करेंगे, उसके बाद क्या कुछ ट्रेंड में चल रहा है उस पर बात करेंगे, टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, बॉलीवुड की बात करेंगे एंड साथ में बात करेंगे आपकी और आपके ओपिनियंस की। तो बिल्कुल अपना फोन जो है तैयार रखना, 3311063 नंबर जो है सेव करके रख लो। एंड आपके लिए अमेजिंग वाले गाने जो है वो तो मैं लेकर ही आऊंगी। सो आंखों से तूने 2.0 राघव जुयाल डांस कर रहे हैं, अपने डांस का दम दिखा रहे हैं। सो इसे जरा वॉल्यूम बढ़ाकर एंजॉय कीजिए आपकी कशिश के साथ और कहते रहिए जियो बिंदास।

0: आई नो इस मौसम को मैं बहुत सारे लोगों के साथ जो है कंपेयर करती रहती हूँ, लेकिन आज जो है मौसम बिल्कुल वैसे बिहेव कर रहा है वो जब आप रिलेशनशिप में किसी को बहुत बार जो है मौके नहीं दे देते हो और फिर वो जो है फिर भी नहीं समझता है, बिल्कुल वैसे ही हो रहा है मौसम। क्योंकि मौसम जो है वो ये तो दिखाता है कि यार देखो मैं अब बदलने वाला हूँ, बारिश होने वाली है, लेकिन फिर भी कुछ होता नहीं है, बस ऐसे ही ऊपर ऊपर से दिख जाता है बस। आज आपकी कुल सी छोरी आपकी कशिश है यहाँ पे आ चुकी है लेकर आपके लिए बिंदास मॉर्निंग, जहाँ पर आपकी बोरिंग बेसिक मॉर्निंग को बिंदास में बना रही हूँ। अब देखो यार, अगर सर्दी कहीं आ रही है तो वो सिर्फ मेरे वायरल में आ रही है, मतलब मुझे जो है वायरल सर्दी हो रही है, कोल्ड मुझे हो रहा है, कहीं भी कोल्ड जो है वो मौसम में नहीं दिखाई दे रहा है, कहीं भी जो है हवाएं चलती हुई नहीं दिख रही है। हाँ, ये नहीं बोल रही हूँ मैं कि टेम्परेचर कम नहीं हुआ है, लेकिन जिस हिसाब से मेरा इंस्टाग्राम पे जो है ये आ रहा था ना कि यार बारिश होने वाली है एंड अब तो मौसम पूरी तरीके से बदलने वाला है, कुछ वैसे बदलने नहीं वाला है। एग्जैक्टली जो कल टेम्परेचर हो रहा था वही टेम्परेचर मुझे आज भी दिख रहा है। हाईएस्ट टेम्परेचर आज का 29 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है, नहीं 39 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है, कल जैसे सेम ही है। मैं एक बार को चौंक गई थी कि यार 29 डिग्री हाईएस्ट, तो हाईएस्ट टेम्परेचर आज का 39 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है, लोएस्ट टेम्परेचर आज का 28 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है एंड इस वक्त टेम्परेचर दोहा में हो रहा है 29 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए यार, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको आपकी लाइफ में कूलनेस थोड़ी सी ऐड करनी है तो बस वॉल्यूम बढ़ा लीजिए, क्योंकि कूल सॉन्ग ऑफ द आर आ रहा है आपके रेडियो सेट पर। बाकी और बातचीत जो है जारी रखेंगे 3311063 पर आकर हाय हेलो गुड मॉर्निंग कर दीजिए आपकी कशिश को, क्योंकि आपके मैसेजेस ही जो है वो मुझे सुबह सुबह काम करने पर जो है थोड़ा मोटिवेट कर देते हैं। जल्दी से मैसेज कर दो। बाकी अमेजिंग वाले गाने आ रहे हैं आपके रेडियो सेट पर, वॉल्यूम बढ़ाओ, एंजॉय करो आपकी कशिश के साथ और कहते रहो जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है।

अभी अभिजीत बटारे जी कह रहे हैं तो आप मानेंगे उनकी बात, सुनो ना, मैं कब से कह रही हूँ कि मुझे सुना करो, मुझसे बात करो, हम सब और मुझी को चुन लो, लेकिन आप लोग तो सुनते ही नहीं हो। हाँ जी, आपकी कुल सी छोरी, आपकी कशिश बिंदास मॉर्निंग यहाँ पर लेकर आ गई है। एंड ऐसा नहीं है कि सब नहीं सुनते, ऑफकोर्स सब सुन रहे हैं मुझे, लेकिन मुझसे बात करने के लिए जो लोग सुबह आते हैं वो मुझे काफी ज्यादा पसंद आ जाते हैं। सो बहुत सारे लोगों ने मुझे प्यारी प्यारी गुड मॉर्निंग विशेस जो है वो की है। सो आइए इनके मैसेजेस जो है वो पढ़ लेते हैं। सबसे पहले तो हमें जो है अस्मा जी ने एक बहुत ही प्यारा सा वीडियो भेजा है और गुड मॉर्निंग लिखा है। गुड मॉर्निंग अस्मा जी, कैसे हैं आप? जुल्फी जी ने एक बहुत ही प्यारी सी इमेज भेजी है जिस पे लिखा है हमारा गुड मॉर्निंग वाला कोट। उसके बाद शशिकांत पाटिल जी ने भी हमें एक फ्लावर वाला बुके भेजा है एंड गुड मॉर्निंग लिखा है। संधू जी ने भी गुड मॉर्निंग कहा है। गुड मॉर्निंग संधू जी, कैसे हैं आप? अबरार जी ने भी जो है हमें एक बहुत ही प्यारी सी चाय की कप की फोटो भेजी और मुझे याद दिला दिया है कि ओहो चाय पीने का टाइम आ गया है। हैप्पीनेस जी ने, हैप्पीनेस जी का नाम है जुनेद, जुनेद जी ने भी हमें गुड मॉर्निंग कहा है। गुड मॉर्निंग जुनेद जी, कैसे हैं आप? उसके बाद मिस्टर असलम जी ने भी हमें जो है गुड मॉर्निंग कहा है। गुड मॉर्निंग। अब देखिए यार, जब इतने सारे लोग हमें सुन ही रहे हैं तो क्यों ना ये किया जाए कि आप लोगों से, आप लोगों को इस वक्त क्या कुछ नजर आ रहा है इसकी फोटो खिंचवाई जाए। सो जल्दी से प्यारी प्यारी सीनरी की, प्यारे प्यारे व्यू की, प्यारे प्यारे आसमान की फोटोज मुझे खींच के भेज दीजिए। लेकिन अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो मत कीजिएगा। अगर आप साइड में बैठे हुए हैं या ड्राइव जो है आपकी रुकी हुई है, सिग्नल पे आप खड़े हैं, तो फिर करके मुझे प्लीज भेज दीजिएगा, क्योंकि इस बिना खिड़की वाले स्टूडियो में मुझे बड़ा ही अजीब सा लगता है। सो आप बन सकते हैं मेरी आंखें, आपके थ्रू मैं इस दुनिया को देख सकती हूँ। सो प्यारी प्यारी फोटोज अपनी भेज दीजिए मुझे 3311063 पर। फिलहाल एक अमेजिंग वाला गाना आ रहा है आपके रेडियो सेट पर, इंजॉय कीजिए वॉल्यूम बढ़ाकर आपकी कशिश के साथ और कहते रहिए जियो बिंदास।

0: प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेसेस पर पाओ फ्री कैश वाउचर्स और सिर्फ 25% पे करके गोल्ड रेट को ब्लॉक कर दो.
1: आई स्टिल कांट बिलीव इट, नो कैच.
0: कैचेस सिर्फ मैचेस में होते हैं बेबो. दिस इज योर फेस्टिव गिफ्ट फ्रॉम मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स.
2: It's back! LG and Jumbo's mega promotion. Assured gift vouchers on every purchase of LG appliances, ACs, gaming monitors, TVs and audio products. Avail up to 3 years extended warranty, Mukafa loyalty points, Nujum, Air Miles and Avios.
3: Visit today at LG Brand Shop, Jumbo Store and JS.QA. Hurry! Offer valid till 19th October.
4: Malabar Gold and Diamonds Bindas Morning.
5: It's the season of jewelry and the season of offers at Malabar Gold and Diamonds. Diamond and precious gem jewelry purchase per pie, free cash vouchers.
6: In association with
7: Choose Bima, third part of liability today. Stay claim free to enjoy 7% cashback. Visit bima.com.qa. Bima for your peace of mind. TNC apply.

0: कि बादल भी सूरज से यही कहते होंगे कि अपने ही रंग में मुझे रंग दे, और जैसे जैसे सनराइज होता है वैसे वैसे आसमान जो बादल है वो पूरी तरीके से सन के रंग में जो है रंग जाते हैं। There's something about me, I can romanticize anything, anything. वेलकम जी 106.3 रेडियो वाले पर, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए बिंदास मॉर्निंग लेकर आ गई हूँ। थोड़ी देर पहले आपसे रिक्वेस्ट की थी कि यार इस बिना खिड़की वाले स्टूडियो में जरा मन नहीं लग रहा है, जरा आपकी नजरों से मुझे बाहर दिखा दीजिए कि क्या नजारे हैं। सो बहुत सारे लोगों ने मुझे जो है प्यारी प्यारी फोटो भेजी है, यासीन जी ने भेजी है। ओ हो, जिस सन के आसमान को कलर करने की मैं बात कर रही थी ना, वो ही मुझे इस फोटो में जो है दिखाई दे गया है। एंड एकदम ग्रेडियंट सा कलर हो रखा है आसमान का। एंड मुझे संधू जी ने भी एक बहुत ही प्यारी सी फोटो भेजी है, थैंक यू सो मच संधू जी। एंड मोहम्मद असलम जी ने भी एक बहुत ही प्यारी सी फोटो भेजी है। असलम जी, मुझे एसी दिख रहा है, मुझे सन दिख रहा है लेकिन बहुत ही मजा आ रहा है, थैंक यू सो मच। एंड बस आप लोग भी अगर ऐसे ही सड़क पे हैं और आपको आसमान खूबसूरत दिख रहा है तो क्यों ना आप मुझे फोटो भेज दें, मुझे अच्छा लग जाएगा। फिलहाल ऑल फ्रेश सॉन्ग ऑफ द ईयर आ रहा है आपके रेडियो से पर, और गाने का नाम गेस कीजिए क्या है। गाने का नाम है बरसात, जिस बरसात का वादा हमसे कल हुआ था लेकिन वो बरसात अभी तक आई नहीं। कोई बात नहीं, मैं जाती हूँ ग्रीन टी पीकर आती हूँ, आप जरा जो है वॉल्यूम बढ़ाकर ऑल फ्रेश सॉन्ग ऑफ द ईयर इंजॉय कीजिए आपकी कशिश के साथ, और कहते रहिए जियो बिंदास।
1: Radio Olive Park. Fresh, fresh, fresh, fresh, fresh. Ye gana fresh. Fresh song of the hour. Ye gana.

0: एंटरटेनमेंट की या कोई सीमा नहीं, बनाइए अपने मॉर्निंग को बिंदास मॉर्निंग। बिंदास मॉर्निंग हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। It's the season of jewelry and the season of offers at Malabar Gold and Diamonds. Diamond and precious gem jewelry purchase par paye free cash vouchers.
2: In association with Choose Bima, third part of liability today. Stay claim free to enjoy 7% cashback. Visit bima.com.qa. Bima for your peace of mind. TNC apply.

हाँ जी, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि रात भर जो है सिर्फ पढ़ाई कर लो ना, तो फिर अगले दिन एग्जाम में जो है अच्छा परफॉर्म कर पाती हूँ, लेकिन मैं हर बार गलत प्रूफ हो जाती हूँ, पता नहीं कैसे। ये छोरी जी, आपकी कुल छोरी आपकी कशिश जो है यहाँ पर आ चुकी है बिंदास मॉर्निंग आपके लिए लेकर, एंड बहुत सारी अमेजिंग प्यारी फोटोज जो है वो मैंने देखी, एंड मुझे उसके बाद लगा कि यार ये लोग तो जो है फोटोज भेज रहे हैं तो मुझे आंसर भी दे देंगे, इसीलिए ब्लैक बोर्ड स्टोरी वाला सवाल जो है मैं फिर से लेकर आ गई हूँ। सो जितने भी लोग मुझे इस वक्त सुन रहे हैं, स्पेशली बच्चा पार्टी अगर आप मुझे सुन रहे हैं, तो ये क्वेश्चन जो है आपके लिए होने वाला है। बाकी बड़े लोग भी आंसर दे सकते हैं और हमें ये बता सकते हैं कि वो पांचवी छठी सातवीं आठवीं नवीं दसवीं ग्यारहवीं बारहवीं और कशिश से बहुत ज्यादा स्मार्ट है। सो यार देखो, आज का सवाल ना काफी इजी है, हम सब ने स्कूल में जो है जीके में पढ़ा है। सो बस मुझे इतना बता दीजिए कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर का नाम क्या है, बस वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर का नाम आपको मुझे बताना है। चीटिंग कर सकते हैं आप, ऑब्वियसली आप करेंगे ही, लेकिन जो भी सबसे पहले आंसर दे देगा वो मैं समझ जाऊंगी कि यार इसको तो पहले से पता था, बाकी थोड़ी सी देरी करने वाले लोगों में समझ आ जाएगा कि हाँ ये तो गूगल से कॉपी करके बता रहे हैं मुझे। 3311063 इज द नंबर, जल्दी से मुझे जो है मैसेज कर दीजिए कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर जो है वो कौन सी है 3311063 पर जल्दी से मुझे आंसर कीजिए। एंड अमेजिंग वाले गाने तो आपके रेडियो सेट्स पे आ ही रहे हैं, मुसाफिर कैफे से अगला गाना जो है वो आ रहा है, सो जरा वॉल्यूम बढ़ाकर एंजॉय कीजिए आपकी कशिश के साथ, और कहते रहिए जियो बिंदास।

0: यार मतलब एक सवाल के दो जवाब अगर कहीं से निकल आए तो फिर दंगल ही हो जाता है। जैसे मैंने अभी आपसे जो है एक छोटा सा सवाल किया था, ये मुझे बताओ कि वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है। अब लोगों ने जो है मुझे दो दो आंसर भेजने शुरू कर दिए और कहा कि यार कशिश तुमने लॉन्गेस्ट बोला है या लार्जेस्ट बोला है, क्योंकि अगर लॉन्गेस्ट बोला है तो ये आंसर है और लार्जेस्ट बोला है तो ये आंसर है। सो मेरा क्वेश्चन है वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर का नाम आपको मुझे बताना है। 3311063 पर अगर आप मुझे बता सकते हैं। वेलकम जी, गुड मॉर्निंग, मैं हूँ आपकी कशिश एंड सो आपके लिए लेकर आ गई हूँ बिंदास मॉर्निंग। हाँ जी, आपकी कूसी छोरी आपकी कशिश जो है यहाँ पर आ चुकी है आपके लिए बिंदास मॉर्निंग लेकर। एंड मुझे बहुत सारे जवाब ऑलरेडी मिल चुके हैं, मतलब मुझे ये समझ आ चुका है कि लोगों के पास नॉलेज तो है लेकिन थोड़ा एक्स्ट्रा ही है कि वो सवाल को भी चैलेंज कर सकते हैं कि लॉन्गेस्ट बोला है या लार्जेस्ट बोला है। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच, मुझे काफी अच्छा लगा ये देख कर, ये सुनकर, ये जानकर कि यार लोगों को काफी ज्यादा जो है पता है एंड वो काफी ज्यादा अवेयर है। सो क्या आप उन लोगों में से एक है, बताइए मुझे 3311063 पर मैसेज करके कि वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर जो है वो कौन सी है एंड वो कितनी जो है फीट लंबी है, कितने मीटर किलोमीटर लंबी है, ऐसा कुछ बता दोगे तो और ज्यादा मजा आ जाएगा। सो 3311063 पर अगर जल्दी से मुझे बता दो। फिलहाल जबरदस्त हिट गाना जो है आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर, तेरे इश्क में गाने का नाम है। जरा वॉल्यूम बढ़ाकर अरिजीत सिंह की आवाज में इंजॉय कीजिए गाना। थोड़ी सी देर बाद जो है विनर्स का नाम जो है वो हम अनाउंस करेंगे कि कौन कौन है जिसकी नॉलेज जो है वो एकदम जबरदस्त है। जबरदस्त हिट सॉन्ग वॉल्यूम बढ़ाकर एंजॉय कीजिए आपकी कशिश के साथ और कहते रहिए जी बिंदास।
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

बहुत ही बढ़िया वाला गाना था यार, मतलब मैं ना खो गई थी क्योंकि मुझे लगा कि यार ये 90s इतना ज्यादा रिलेटेबल कैसे। आपने कभी लिरिक्स को जो है ध्यान से सुना है और फिर कभी आपको रियलाइज हुआ है कि ये गाना हमने कितनी बार सुना है लेकिन हमने इतना ध्यान कभी नहीं दिया इस पर? हाँ जी, आपकी खुद ही छोरी आपकी कसू जो है यहाँ पर आ चुकी है लेकर आपके लिए बिंदास मॉर्निंग, जहाँ पर आपकी बोरिंग बेसिक मॉर्निंग को बिंदास बनाने का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने अपने नाजुक कंधों पर उठा रखा है। अब देखिए यार, थोड़ी देर पहले मैंने आपसे सवाल किया था कि हमारे वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है, तो सही आंसर है रिवर नाइल। एंड कुछ लोगों ने मुझे जो है अमेजोन भी कहा था, लेकिन ये डिबेट जो है सालों सालों से चालू है, लेकिन रिवर नाइल को जो है ट्रेडिशनली एक्सेप्ट किया गया है लॉन्गेस्ट रिवर के तौर पर, एंड 6,650 किलोमीटर्स लंबी है रिवर नाइल। सो जितने भी लोगों ने रिवर नाइल कहा है उन सबके आंसर बिल्कुल सही है। आंसर जो है हम देख लेते हैं, मुझे जो है फहीम जी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, एंड संतोष जी ने भी बिल्कुल सही आंसर दिया है, पंकज मिश्रा जी ने भी बिल्कुल सही आंसर दिया है। थैंक यू सो मच आप सबके प्यारे प्यारे आंसर्स के लिए, एंड ऐसे ही जो है स्टे ट्यून्ड रहिए। एंड फिलहाल आप सब के लिए बहुत ही बढ़िया वाला गाना गेंदा फूल दिल्ली 6 से आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर, जरा वॉल्यूम बढ़ाकर ये गाना एंजॉय कीजिए और कहते रहिए जियो बिंदास।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM. Buying new glasses? Get up to 100% payback offer at Alfala Optics. Find this and more offers on Savify. Visit savify.co today. Unlock your child's potential with Brilliant Qatar. 15 years of excellence and trust. Expert coaching for NEET, JEE and CBSE. Offline and online options. Our 6th branch is now open at Alvakra. For more details, call 500-56123.
1: It's back! LG and Jumbo's mega promotion. Assured gift vouchers on every purchase of LG appliances, ACs, gaming monitors, TVs and audio products. Avail up to 3 years extended warranty, Mukafa loyalty points, Nujum, Air Miles and Avios.
2: Visit today at LG Brand Shop, Jumbo Store and JS.QA. Hurry! Offer valid till 19th October.
3: Huh? Free cash vouchers on diamond jewelry? सीरियसली माही?
4: यस बेबो,
3: सिर्फ 25% पे करके गोल्ड प्राइस लॉक कर सकती हूँ?
4: यस.
3: कैच क्या है?
4: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स के साथ सेलिब्रेशंस को और भी खास बनाओ. डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेसेस पर पाओ फ्री कैश वाउचर्स और सिर्फ 25% पे करके गोल्ड रेट को ब्लॉक कर दो.
3: आई स्टिल कांट बिलीव इट, नो कैच.
4: कैचेस सिर्फ मैचेस में होते हैं बेबो. दिस इज योर फेस्टिव गिफ्ट फ्रॉम मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स.
5: Malabar Gold and Diamonds Bindas Morning.
6: It's the season of jewelry and the season of offers at Malabar Gold and Diamonds. Diamond and precious gem jewelry purchase per pie, free cash vouchers.
5: In association with
7: Choose Bima, third part of liability today. Stay claim free to enjoy 7% cashback. Visit bima.com.qa. Bima for your peace of mind. TNC apply.
8: Jab se tumhe maine dekha sanam. जब

ये गाना समझाता है कि भाई प्यार में इंसान किस हद तक चला जाता है। इस गाने को अगर आपको समझ में नहीं आ पाया है तो मैं बता देती हूँ कि इस गाने में कहा गया है कि यार देखो, अगर यार नहीं बनाना मुझे तो अपने पैर की झांझर ही बना लो, पायल ही बना लो, कुछ बना लो, लेकिन अपने से दूर मत जाने दो यार। आपकी कुलदीप छोरी आपकी कशिश यहाँ पर बिंदास मॉर्निंग आपके लिए लेकर आ चुकी है 106.3 रेडियो ऑलिव पर। एंड बहुत ही क्यूट क्यूट मैसेजेस जो है वो मुझे आ रहे हैं। मुझे जो है नईम जी ने जो है मैसेज किया हुआ था एंड इन्होंने जो है मॉर्निंग वॉक की मुझे फोटोज भेजी हैं एंड सुबह सुबह 5:30 बजे की फोटोज जो है वो मुझे भेजी हैं जहाँ पे सन जो है वो राइज कर रहा था। थैंक यू सो मच एंड बहुत ही खुशी हुई कि आपने अपनी मॉर्निंग वॉक का हिस्सा जो है वो हमें बनाया। बाकी बहुत सारे लोग अभी भी आंसर दे रहे हैं रिवर नाइल, तो थैंक यू सो मच। थोड़ी सी देर में जो है आपको सारी की सारी अपडेट्स जो है वो मिलने वाली हैं, जितनी भी आपको जरूरी है आज के दिन में जानने के लिए। सो स्टे ट्यून रहिए, बाकी वॉल्यूम बढ़ाकर बावरे गाना जो है इंजॉय कीजिए आपकी कशिश के साथ और कहते रहिए जी बिंदास।

0: एंटरटेनमेंट की या कोई सीमा नहीं, बनाइए अपने मॉर्निंग को बिंदास मॉर्निंग। बिंदास मॉर्निंग हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओनली 106.3 FM जियो बिंदास।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग।
2: It's the season of jewelry and the season of offers at Malabar Gold and Diamonds. Diamond and precious gem jewelry purchase par paye free cash vouchers.
3: In association with Choose Bima, third part of liability today. Stay claim free to enjoy 7% cashback. Visit bima.com.qa. Bima for your peace of mind. TNC apply.

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। अपने लव्ड वंस को पैसे भेजना हुआ और भी इजी। कतर में पहली बार अलदार एक्सचेंज लाया है वीजा डायरेक्ट, जिससे पैसे सीधा फैमिली के बैंक अकाउंट में। फास्ट, इजी और रिलायबल। विजिट कीजिए अलदार की 38 ब्रांचेस या डाउनलोड कीजिए अलदार एक्सचेंज ऐप नाउ।
1: हाय, दिस इज दीपिका पादुकोण।
2: दीपिका पादुकोण,
1: रेडियो ओलिव 106.3।
0: सुनो रेडियो नेटवर्क कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।
3: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग।
4: It's the season of jewelry and the season of offers at Malabar Gold and Diamonds. Diamond and precious gem jewelry purchase par paye free cash vouchers.
5: In association with
6: Choose Bima, third part of liability today. Stay claim free to enjoy 7% cashback. Visit bima.com.qa. Bima for your peace of mind. TNC apply.

0: जैसे आपको जो है किसी ने ट्रोल किया हो कि यार ये तो तुम कर ही नहीं सकते, या ये तो तुम स्ले कर ही नहीं सकते, इन कपड़ों में तुम अच्छे ही नहीं लगोगे, और आप जो है उन्हें गलत प्रूफ कर दो, आप जो है अचानक से उनको बेटर दिख जाओ, तो जो एकदम अच्छी वाली फीलिंग आती है ना, ऐसे सुकून सा मिलता है, वही बस इस वक्त मुझे हो रहा है। नहीं, मैंने ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं किया है, क्योंकि जो लोग ऐसा बोलते हैं कि तुम नहीं कर सकती, मैं उनसे बात ही नहीं करती। मैं लिटरली उन लोगों से बिल्कुल बात नहीं करती जो लोग जो है नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश करते हैं, जो लोग ये बोलते हैं कि यार कशिश तुमसे नहीं होगा, ये ना तुम पे अच्छा नहीं लगेगा। कैसे नहीं लगेगा, ऐसे कैसे अच्छा नहीं लगेगा? आप कौन होते हो मुझे क्रिटिसाइज करने वाले? मैं खुद को क्रिटिसाइज कर लूंगी, कोई बात नहीं, मेरे घर में आईना है, मैं देख लूंगी, आपको बोलने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मुझे खुशी किस लिए हो रही है? मुझे खुशी हो रही है कैटरीना कैफ के लिए। यस, द कैटरीना कैफ, मतलब बहुत ही ज्यादा खूबसूरत इंसान को जो है लोग ट्रोल कर रहे थे अभी कुछ दिन पहले, जब वो एक इवेंट पे दिखाई दी थी अपने हस्बैंड के साथ, एक प्यारे से ग्रीन अनारकली में, जिसमें वो बहुत खूबसूरत, बहुत रॉयल लग रही थी, लेकिन लोगों ने उन्हें जो है काफी ट्रोल किया, क्योंकि उनकी ये पहली अपीयरेंस थी आफ्टर बिकमिंग अ मदर, सो काफी लोगों ने उन्हें जो है ट्रोल किया। लेकिन उसके बाद अभी उन्होंने जो अभी रिसेंटली पिक्चर्स डाली हैं, उसमें इतनी ज्यादा स्ले कर रही हैं वो, एंड लोगों ने पहले तो जो है तारीफ करी कि यार बहुत ही अच्छा लुक लग रहा है, उसके बाद जो है उसको रणवीर सिंह के लुक से कंपेयर करने लग गए धुरंधर वाले। सो वही पठानी सलवार, ब्लेजर एंड बड़े बड़े शेड्स ऑब्वियसली। एंड जब से मैंने ये पोस्ट जो है इंस्टाग्राम पे देखा है, तब से मैं उसे अनदेखा नहीं कर पा रही हूँ, आई कांट अनसी इट नाउ। लेकिन जो भी है, कैटरीना कैफ स्ले कर रही हैं, एंड मैं कैटरीना कैफ से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हूँ कि लोगों को बोलने दो, मैं कुछ नहीं बोलूंगी, मैं करके दिखाऊंगी। तो बस मैं भी करके दिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले आपको सुनाऊंगी कूल सॉन्ग ऑफ द ईयर। जरा वॉल्यूम बढ़ाकर ये गाना एंजॉय कीजिए आपकी कशिश के साथ, और कहते रहिए जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द ईयर।

परदेश मूवी से ये ट्रैक जो है आपके रेडियो सेट्स पर आया एंड परदेश से जो है मैं उन लोगों से मतलब परदेश से याद आया कि मुझे उन लोगों से बात करनी है जो लोग अपने घर से थोड़ा सा दूर रहते हैं एंड उनके बच्चे जो है वो यहाँ कतर में बड़े हो रहे हैं लेकिन उनके ग्रैंड पेरेंट्स जो है वो उनका अपनी कंट्री में जो है वो इंतजार करते हैं कि जब वेकेशन होगी तो हमारे जो ग्रैंड चाइल्ड है ये हमसे मिलने के लिए आएंगे। अब मैं जो है अपने ग्रैंड पेरेंट्स के बहुत ज्यादा करीब हूँ, मतलब मैंने जो है अपना बचपन पूरा उन लोगों के साथ बिताया है एंड ये पहली बार हुआ है जब मैं कतर आई हूँ कि मैं उनसे इतने दूर हूँ इतने ज्यादा दिनों के लिए। सो मुझे जो है काफी बुरा लगता है लेकिन एक रिसर्च जो है वो जो मैंने अभी अभी पढ़ी एंड उस रिसर्च के बाद मुझे ऐसा लगा कि यार इसीलिए मैं बचपन में इतनी ज्यादा खुश थी एंड अभी तक मुझ में वो जो खुशी है वो थोड़ी सी बाकी है। सो रिसर्च का ये कहना है कि जो बच्चे अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ जो है वो बड़े होते हैं जो उनके साथ रहते हैं और बेसिकली हिंदी में एक वर्ड है उनके सानिध्य में आगे बढ़ते हैं उनको जो है 30% कम चांसेस होते हैं डिप्रेशन के। एंड जाकिर खान साहब ने भी अपने स्टैंड अप में कहा था कि बड़ों के जो है आशीर्वाद में बड़ों के अगर साये में आप रहते हैं ना तो आप खुश रहते हैं, आपको पता नहीं चलता है कि आपको कितनी सारी अलग अलग टाइप की ब्लेसिंग्स जो है वो मिल रही हैं, आप कितने प्रिविलेज्ड हैं। सो जितने भी पेरेंट्स इस वक्त मुझे सुन रहे हैं जिनके बच्चे यहाँ कतर में बड़े हो रहे हैं अपने पेरेंट्स से यानी उन बच्चों के ग्रैंड पेरेंट्स से उन्हें जो है टाइम टू टाइम बात करवाते रहना उन्हें कनेक्टेड फील करवाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो एक बार ज़रूर से कोशिश कीजिएगा कि दिन में एक बार जो है वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स से बात करें एंड वेकेशन पर कहीं और तो जाएं ही सही लेकिन अपने घर पर जब जा रहे हैं तो भी उनके साथ अच्छा खासा वक्त जो है वो स्पेंड करें। मैं हूँ आपकी कशिश, वॉल्यूम बढ़ा के अमेजिंग वाला गाना जो आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर इसे एंजॉय कीजिए आपकी कशिश के साथ और कहते रहिए जियो बिंदास।

गाने का नाम मैजिक, दिलजीत पाजू की आवाज में ये ट्रैक आपने एंजॉय किया 106.3 रेडियो ऑलिव पर। मैं हूँ आपकी कशिश, ये छोरी कशिश एंड आपके लिए बिंदास मॉर्निंग लेकर आ गई हूँ, जहाँ पर आपकी बोरिंग बेसिक मॉर्निंग को बिंदास बनाने का भीड़ यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने अपनी नाजुक कंधों पर उठा रखा है। अब देखो यार, मुझे ना काफी अजीब लगता है जब लोग कार को जो है एक स्टेटस सिंबल की तरह कंसिडर करते हैं, बिकॉज कार जो है यूटिलिटी, एंड स्पेशली अगर हम बात करें कतर में, तो कार जो है एक जगह से दूसरे जगह जाने में बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होती है, काफी ज्यादा हेल्प करती है। एंड अगर आप अपनी खुद की कार ओन करते हैं तो काफी सारे बेनिफिट्स होते हैं। एक रिसर्च में पढ़ रही थी जिसके हिसाब से अगर आप खुद की कार जो है वो खरीद लेते हैं तो आपका सोशल स्टेटस जो है वो 120% बढ़ जाता है। हाँ जी, सो कार को जो है वो बहुत ज्यादा आपके सोशल स्टेटस से जो है वो कनेक्ट किया जाता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जरूरत के हिसाब से जो है वो कार आपको प्रेफर करनी चाहिए। सो आपका क्या कहना है कि कार क्या जो है सिर्फ एक एक इम्पॉर्टेंट चीज है या एक सोसाइटी में रिस्पेक्ट पाने का एक सिंबल है? कि कौन सी कार आप चलाते हैं एंड आपके पास कार है या नहीं है? मैं हूं आपकी कशिश, ऑल फ्रेश सॉन्ग ऑफ द आर आपके रेडियो सेट्स पर, वॉल्यूम बढ़ाकर एंजॉय कीजिए और कहते रहिए जियो बिंदास रेडियो।

0: एंटरटेनमेंट की या कोई सीमा नहीं, बनाइए अपने मॉर्निंग को बिंदास मॉर्निंग। हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। It's the season of jewelry and the season of offers at Malabar Gold and Diamonds. Diamond and precious gem jewelry purchase par paye free cash vouchers.
2: In association with Choose Bima, third part of liability today. Stay claim free to enjoy 7% cash back. Visit bima.com.qa. Bima for your peace of mind. TNC apply.

इस गाने को सुनते ही मुझे जो है अपना वीकेंड याद आ जाता है कि कितने बढ़िया तरीके से मैंने कितना सारा डांस किया था एंड अभी तक मेरे पैरों में जो है उस वजह से थोड़ा थोड़ा तो देखो दर्द हो रहा है। जी मैं हूँ आपकी कुल सी छोरी आपकी कशिश एंड आपके लिए बिंदास मॉर्निंग लेकर आ गई हूँ जहाँ पर आपकी बोरिंग बेसिक मॉर्निंग को जो है बिंदास बनाने का बीड़ा एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने अपने नाजुक कंधों पर उठा लिया है। अब देखिए यार अभी जो हमने एक फेस्टिव फ्यूजन नाइट जो है वो की थी जहाँ पर बहुत सारा डांडिया जो है वो हमने किया था और फेस्टिव सीजन बेसिकली जो है एक हवा के साथ आता है जिसमें आपको ऐसे ऐसे लगता है कि बस आप कोई एथनिक आउटफिट्स कोई ट्रेडिशनल आउटफिट्स जो है वो पहना दे। सो अगर आप लोग भी यू नो इस फेस्टिव सीजन में जो है थोड़े से कलरफुल दिखना चाहते हो क्योंकि पूरा इंस्टाग्राम इस वक्त कलरफुल हो गया है सारे इन्फ्लुएंसर्स जो है वो कुछ कलरफुल कर रहे हैं। सो मैं आपके लिए जो है एक फैशन टिप लेकर आई हूँ। सो इस वक्त जो है वो काफ़ी डेनिम जो है वो काफ़ी इन ट्रेंड है वापस। ऑब्वियसली वैसे तो एवरग्रीन है डेनिम लेकिन इस वक्त वापस ट्रेंड में आ गई है लेकिन उस पर जो है मिरर वर्क काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है। सो आप जो है किसी भी स्टेशनरी से जो है जो मिरर्स होते हैं ना छोटे छोटे चाहे वो डायमंड शेप के हो चाहे वो सर्कल हो वो आप ले सकते हैं एंड बस उन्हें अपनी पुरानी किसी भी डेनिम शर्ट या डेनिम जैकेट या डेनिम स्कर्ट पर या बेसिकली अपनी जीन्स पर भी आप अलग अलग पैटर्न में स्टिक कर सकते हैं। एक DIY प्रोजेक्ट होगा आपका वीकेंड जो है वो आपके लव्ड वंस के साथ बढ़िया तरीके से जो है वो स्पेंड भी हो जाएगा एंड आपके पास एक यूनिक पीस होगा इस फेस्टिव सीजन में पहनने के लिए। अब चाहे आप अगर डेनिम्स पे कर रहे हैं तो चाहे शॉर्ट कुर्ते के साथ उसे पेयर कीजिए मैं लड़कों की भी बात कर रही हूँ या आप डेनिम जैकेट्स जो है उस पर कर सकते हैं एंड बेसिकली जैसे जैसे कतर का जो है मौसम ठंडा होगा थोड़ा थोड़ा तो ये डेनिम जैकेट आपके काम भी आएगी एंड आप इसे एज अ स्टेटमेंट पीस जो है वो पेयर भी कर पाएंगे। देखिए अमेजिंग वाला मैंने आपको एक हैक बता दिया है। बाकी अगर आप ये कर रहे हैं तो फोटो मुझे जरूर से भेजिएगा 3311063 पर। फिलहाल पिया घर आया जो है गाना आ रहा है आपके रेडियो से इस पर जरा वॉल्यूम बढ़ाकर आवारा पन 2 से ये गाना एंजॉय कीजिए आपकी कशिश के साथ और कहते रहिए जियो बिंदास।

0: इश्क लड़ाए सनम का तो देखो मुझे नहीं पता, लेकिन वजन घटाए सनम ये वाली बात जो है वो मुझे थोड़ी सी अपनी अपनी सी लग रही है। ये छोरी सो यार मतलब मुझे ऐसा लगता है, मुझे बहुत सारे लोगों ने ऐसा बोला है कि जब आप अपनी कंट्री से जो है कतर आते हो तो थोड़ा सा ऐसे वेट जो है वो बढ़ ही जाता है। इतना प्यार तो आपको गल्फ देता है कि आप थोड़े से जो है चबी हो ही जाते हो। एंड इस चीज़ को मैंने पर्सनली जो है बहुत ज़्यादा महसूस किया है। एंड बहुत सारे लोगों ने मुझे यहाँ पर बताया कि यार कशिश जब भी आप कतर आते हो ना यहाँ पे इतना प्यार मिलता है आपको, यहाँ की हवा में ही कुछ है, इतना प्यार है कि आप थोड़े से चबी हो जाते हो, आपको थोड़ा सा वो वेट जो है वो पुट ऑन हो ही जाता है। सो उसको जो है न्यूट्रलाइज करने के लिए मैंने जो है काफ़ी सर्च किया, मैंने काफ़ी सारे यू नो डाइटिशन से बात की, न्यूट्रिशन की जो है बुक्स पढ़ी, चैटजीपीटी क्लॉड हर जगह जाके पता किया, लेकिन एक चीज़ जो थी हर जगह कॉमन थी और वो थी सुबह उठने के बाद कुछ ऐसा पीना जिससे आपकी बॉडी जो है वो रिलैक्स हो जाए, एंड वो है घी एंड पानी। सो ल्यूकॉम वाटर लेना है आपको और घी लेना है, एंड इसको मिक्स करके आपको सुबह सुबह पीना है। एंड अगर आप इसे मिक्स करके नहीं पी पा रहे तो आप थोड़ा सा घी जो है वो खा सकते हैं, उसके बाद फिर आप पानी पी सकते हैं ल्यूकॉम। सो इससे जो है काफ़ी बेनिफिट होगा। मैंने जो ये कुछ दिन पहले चालू किया एंड मुझे जो है जनरली थोड़ा लाइट फील हो रहा है, एंड सुबह जो है नींद आराम से खुल जाती है। मतलब आप उठते ही ब्रश करने के बाद अगर वो पी लेते हो तो आपको जो है पूरा दिन ऐसे बढ़िया से नींद कम आती है, नींद नहीं आती, आलसी बेसिकली फील नहीं होता है। सो एक बार ये जरूर से ट्राई करना। बाकी ऐसे अगर हेल्थ टिप्स आपको और चाहिए तो हम इसे पूरा का पूरा सेगमेंट बना सकते हैं, है ना। तो बताइए मुझे 3311063 पर कि क्या ऐसे ट्रिक्स एंड टिप्स आपको चाहिए। बाकी जबरदस्त हिट गाना जो है यार आपके रेडियो सेट्स पर, जरा वॉल्यूम बढ़ाकर एंजॉय कीजिए आपकी कशिश के साथ और कहते रहिए जी उपिंदास।
1: अब सुनिए।

इस गाने को सुनते ही पता नहीं क्यों मुझे वो क्रिंज एनिमेटेड वीडियोस की याद आ जाती है जो एक वक्त में इंटरनेट पे जो है काफी ऐसे बवाल समझ आ रहे थे कि यार ये तो हर जगह बस यही वीडियोस है। हाँ जी, आपकी कौन सी छोरी, आपकी कशिश यहाँ पर आ गई आपके लिए लेकर बिंदास मॉर्निंग। और एक कहानी मैं आपको सुनाने वाली हूँ। सो बहुत पहले एक राजा था एंड वो जो राजा था, ये एक मेड अप स्टोरी है, ठीक है, सिर्फ मॉरल ऑफ द स्टोरी बताने के लिए। सो उस राजा के कोर्ट में एक डिजाइनर्स का ग्रुप आया और उन्होंने कहा कि हम एक ऐसी ड्रेस आपके लिए बनाना चाहते हैं जो सिर्फ इंटेलिजेंट लोगों को दिखे। एंड उन्होंने बोला कि ठीक है, बिल्कुल बनाइए। एंड जो है कुछ दिनों बाद उन्होंने अपने मिनिस्टर्स को, अपने लोगों को जो है वो वहाँ भेजा कि यार ज़रा देख के आओ कि वो जो हमारी जो ड्रेस बननी थी वो कितनी बनी है, कहाँ तक उसका काम हुआ है पूरा। सो ये लोग गए एंड उन डिज़ाइनर्स के घर जाकर इन्होंने देखा तो वो लोग जो है हवा में कुछ बुन रहे थे। तो अब मिनिस्टर्स जो है, जो उसके कोर्ट में काम करने वाले लोग हैं, वो ये भी नहीं कह सकते कि हमें तो दिखाई नहीं दी ड्रेस, क्योंकि फिर तो ये प्रूफ हो जाएगा कि वो इंटेलिजेंट नहीं है। तो उन्होंने राजा को जाके कहा कि हाँ हाँ, ड्रेस बहुत अच्छी बन रही है, बहुत खूबसूरत बन रही है। कुछ दिनों बाद वो डिजाइनर्स जो है हवा में एक हैंगर जैसी चीज जो है वो लेकर आए कि ये देखिए आपकी ड्रेस रेडी हो गई है। एंड राजा ने वो ड्रेस पहन ली। एंड फिर उसके बाद उन्होंने जो है उनके मिनिस्टर से पूछा, उनके लोगों से पूछा कि कैसी लग रही है। सबने बोला बहुत अच्छी लग रही है, क्योंकि अगर वो बोलते कि मुझे तो नहीं दिखाई दे रही है तो फिर काफ़ी जो है हंसी उड़ती और राजा को ऐसा लगता कि वो इंटेलिजेंट नहीं है। एंड राजा भी जो है आईने में देख रहा था लेकिन उसको ड्रेस नहीं दिख रही थी, तो वो भी नहीं बोल पाया कि यार मुझे ड्रेस नहीं दिख रही है, वरना सबको लगेगा कि वो इंटेलिजेंट नहीं है। सो ऐसे ही जो है राजा ने ये प्रिटेंड करते हुए कि हाँ हाँ चलो सबको तो दिख रही है, वो जो है उन्होंने पूरे शहर में अपने हाथी पर बैठ कर जो है एक दौरा लगाया। एंड सब लोग जो है कोई भी ये नहीं कह पाया कि यार हमें वो ड्रेस दिख नहीं रही है, लेकिन एक बच्चे ने जो है मासूमियत से कह दिया कि हाँ हाँ मुझे तो ड्रेस दिख ही नहीं रही है। तब रियलाइज हुआ उन्हें कि यार अच्छा ये ड्रेस है ही नहीं। सो ऐसा ही कुछ जो है एक इटालियन आर्टिस्ट ने करने की कोशिश करी है। उन्होंने अपनी एक आर्टिस्टिक चीज जो है वो बनाई है जो किसी को दिख नहीं रही है, और उन्होंने जो है उसे $18,000 में जो है वो बेच भी दिया है। उन्होंने कहा है कि हाँ मैंने इसे हवा और अपने प्यार से बनाया है, एंड जिन लोगों के दिल में बहुत ज्यादा प्यार होगा ना सिर्फ उन्हीं को ये दिखाई देगी। अब कोई भी ये नहीं कह पा रहा है कि मेरे दिल में प्यार नहीं है। इवन मैंने भी जो है फोटो देखी तो मुझे दिखा नहीं कुछ, बट आई एम श्योर कि ये मजाक होगा, बट ऐसा हुआ है। इटालियन आर्टिस्ट ने जो है $18,000 में जो है ये एक जो आर्ट पीस है वो बेचा है जिसमें कुछ भी नहीं दिख रहा है। सो पता नहीं मुझे ही नहीं दिख रहा है, सच में नहीं दिख रहा है। तो जाओ गूगल पे एक बार सर्च करो इसके लिए, एंड अगर आपको दिख रही है तो फिर बताना मुझे। 3311063 इज द नंबर। फिलहाल एक बहुत ही अमेजिंग वाला गाना आ रहा है आपके रेडियो सेट पर, वॉल्यूम बढ़ाकर एंजॉय करो। आपकी कशिश के साथ रुकते रहो जियो बिंदास।

0: छोटा एड ब्रेक दिखाई दे रहे हैं माँ।
1: ऑल एफ शॉर्ट ब्रेक।
0: हैला जादू।
2: अपने लव्ड वंस को पैसे भेजना हुआ और भी इजी। कतर में पहली बार हल्दार एक्सचेंज लाया है वीजा डायरेक्ट, जिससे पैसे सीधा फैमिली के बैंक अकाउंट में। फास्ट, इजी और रिलायबल। विजिट कीजिए हल्दार की 38 ब्रांचेस या डाउनलोड कीजिए हल्दार एक्सचेंज ऐप नाउ।
3: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग।
4: It's the season of jewelry and the season of offers at Malabar Gold and Diamonds. Diamond and precious gem jewelry purchase par paye free cash vouchers.
5: In association with Choose Bima, third part of liability today. Stay claim free to enjoy 7% cashback. Visit bima.com.qa. Bima for your peace of mind. TNC apply.

हाँ जी, बस इतनी सी बात है कि अब मुझे यहाँ से जाना होगा आपको टाटा बाय बाय कहकर, लेकिन मुलाकात होगी हमारी कल सेम टाइम पर फिर से बिंदास मॉर्निंग में। हाँ जी, मैं हूँ आपकी कशिश एंड आप रेडियो ऑलिव की इंस्टाग्राम हैंडल पर जाकर जो है मुझे जाकर फॉलो कर सकते हो। वहां जाके फॉलो करेंगे आप हमें तो आपको बहुत सारा अमेजिंग कंटेंट देखने को मिलेगा एंड कोई भी चीज जो है आपसे मिस नहीं होगी। स्पेशली अगर मैं पॉडकास्ट की बात करूँ, सो आपको चाहे इंफरटेनमेंट चाहिए, चाहे आपको फनी मूवीज चाहिए, कुछ भी चाहिए, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिल जाएगा। तो जाकर इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर लो, बाकी ट्यून इन करके रखना 106.3 रेडियो ऑल। फिलहाल आपको जाते जाते आवारापन 2 का एक बहुत ही प्यारा सा गाना जो है वो मैं सुनाते हुए जा रही हूँ। सो बस बड़ी सी मुस्कान के साथ मुस्कान का जो है स्वागत कीजिए। अब आपकी कशिश को यहाँ से जाना होगा, टाटा बाय बाय टेक केयर एंड कहते रहिए आपकी कशिश के साथ। जियो बिंदास।

वेलकम, गुड मॉर्निंग. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM. मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम है लाइफ मस्त है. आई नो, मतलब आज मंडे है, वीकेंड परसों ही खत्म हो गया था. कल आपने ऑफिस वापस से ज्वाइन किया, मस्त घूमना फिरना हुआ, कोई नई जगह एक्सप्लोर की या फिर घर रहकर अपनी फेवरेट सीरीज के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड किया, ये भी बताना. और अगर आपने पूरे वीकेंड के बाद कल जब ऑफिस ज्वाइन किया था, सो आई विल से कि आई नो मतलब कितना डिफिकल्ट होता है संडे को सुबह उठना अपने अलार्म के साथ. और आई विल से कि आज मंडे ब्लूज है, मतलब संडे को तो हम जैसे तैसे ऑफिस पहुंच जाते हैं लेकिन मंडे को फुल एनर्जी के साथ आते हैं. तो मुझे लगता है कतर में मंडे ब्लूज नहीं होता, मंडेज आर ऑलवेज गुड इन कतर. सो वैसे आपने एक बात नोटिस की है, तो छुट्टी वाले दिन हम सुबह जल्दी उठ जाएं तो उसे प्रोडक्टिविटी कहते हैं, लेकिन वर्किंग डे पर अगर वही सुबह जल्दी उठना पड़े तो लगता है कि जिंदगी हमारे साथ पर्सनल दुश्मनी निकाल रही है. लेकिन चलिए थोड़ा पर्सपेक्टिव बदलते हैं, नया दिन मतलब एक नया मौका, और हो सकता है आज कोई अच्छा काम पूरा हो जाए, किसी पुराने दोस्त का फोन आ जाए, कोई नई चीज सीखने को मिल जाए, या फिर दिन के लास्ट में आप खुद से कहें कि आज का दिन बुरा नहीं था वैसे. और हर दिन एक्स्ट्राऑर्डिनरी होना भी जरूरी तो है नहीं, कभी कभी पीसफुल मॉर्निंग, अच्छी कॉफी, बिना किसी बड़ी परेशानी के दिन निकल जाना, सब कुछ मतलब अच्छा ही माना जाता है यार. सो मैं हूं मुस्कान आपके साथ. अगले 3 घंटे हम बात करेंगे मूवीज की, बुक्स की, कुछ इंटरेस्टिंग ट्रेंड्स की और छोटी छोटी चीजों की जो हमारी डेली लाइफ को थोड़ा और मजेदार बनाती है सुपर हिट गानों के साथ. सो चलिए दिन की शुरुआत करते हैं एक सवाल के साथ कि आज सुबह उठते ही आपके दिमाग में सबसे पहला ख्याल क्या आया था, काम, ब्रेकफास्ट, पेंडिंग मैसेजेस या फिर सिर्फ 5 मिनट और सोने का मन है. सुनते रहिए रेडियो ऑल ऑफ नंबर सेम 3311063. स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास.

0: टुडे इज 12th ऑफ अक्टूबर, राइट? सो आज वर्ल्ड अर्थराइटिस डे है. इतना मतलब पेनफुल, यू नो, एक जैसे कह सकते हैं कि अवेयरनेस के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है. बहुत ही बुरी बीमारी है ये. अर्थराइटिस के बारे में अवेयरनेस बढ़ाना और लोगों को ये समझाना कि जॉइंट रिलेटेड कंडीशंस का असर सिर्फ बॉडी पर नहीं बल्कि डेली लाइफ पर भी पड़ सकता है. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ऑफ 106.3 FM. मैं हूं मुस्कान और शो का नाम है लाइफ मस्त है. अब अर्थराइटिस का नाम सुनते ही ना अक्सर हमारे दिमाग में ना एक ही तस्वीर आती है कि बूढ़े लोग हैं, घुटनों में दर्द है और चलने फिरने में परेशानी. लेकिन नो, अर्थराइटिस कोई एक ऐसी प्रॉब्लम नहीं है बल्कि जॉइंट्स को प्रभावित करने वाली कंडीशन का एक ग्रुप है. इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं और अलग अलग एज के लोगों को ये इफेक्ट करता है. ऐसा नहीं है कि सिर्फ एज हो जाएगी तो ही इफेक्ट करेगा. सोचिए किसी इंसान को सीढ़ियां चढ़ने में परेशानी हो रही है, किसी को सुबह उठते ही स्टिफनेस हो रही है, या फिर किसी को रोज के छोटे छोटे काम करने में ज्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ रहे हैं. सो ये सब ना चैलेंजिंग हो जाता है. और यही बात हमें एक बड़ी सीख देती है कि हर परेशानी दिखाई नहीं देती. कभी कभी हम किसी को देखकर कह देते हैं, अरे इतना भी क्या हुआ है, थोड़ा चल लो, थोड़ा काम कर लो. लेकिन हमें नहीं पता कि सामने वाला किस तरह की प्रॉब्लम से जूझ रहा है. इसीलिए अवेयरनेस का मतलब सिर्फ किसी प्रॉब्लम के बारे में जानना नहीं है बल्कि लोगों को इसमें ज्यादा अंडरस्टैंडिंग रखनी चाहिए. और अगर आपको जॉइंट पेन, स्वेलिंग, स्टिफनेस जैसी प्रॉब्लम्स होती है ना, तो इससे एज का कोई लेना देना नहीं है. इसे इग्नोर मत कीजिए, मेडिकल एडवाइस लेना बहुत जरूरी है. सो टुडे इज अर्थराइटिस डे. और आपको लगता है कि हम फिजिकल पेन को तभी सीरियसली लेते हैं जब वो हमें साफ दिखाई देता है, या फिर आप बिना जज किए दूसरों की बात सुनना भी सीखना चाहिए आपको लगता है? यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव. मैं हूं मुस्कान. स्टे ट्यून्ड. जियो बिंदास.
1: कूल सॉन्ग रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द

इंडियन सिनेमा में कुछ एक्टर्स ऐसे होते हैं जिनकी सिर्फ एंट्री से थिएटर का माहौल बदल जाता है। स्क्रीन पर उनका पहला शॉट आता है, बैकग्राउंड म्यूजिक बजता है और ऑडियंस की आवाज फिल्म के डायलॉग से भी ऊंची हो जाती है। और ऐसे ही सुपरस्टार हैं रजनीकांत। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM, मैं हूं मुस्कान और शो का नाम लाइफ मस्त है। अब उनकी फिल्म जेलर याद है आपको, उसका एटीट्यूड, उसका म्यूजिक, भाई इतना बढ़िया कैरेक्टर और वो आइकॉनिक स्क्रीन प्रेजेंस। अब उसके सीक्वल जेलर 2 को लेकर बहुत एक्साइटमेंट है लोगों में। सो रिलीज डेट जो है वो 15th of October 2026 है, यानी सिर्फ 2-3 दिन और बचे हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत ही अच्छा सवाल है आपके लिए कि जब किसी फिल्म का पहला पार्ट बहुत बड़ा हिट हो जाता है तो सीक्वल के सामने ना चैलेंजेस बड़े हो जाते हैं। ऑडियंस सिर्फ नई कहानी नहीं चाहती, वो चाहती है कि वही एक्साइटमेंट वापस आए, लेकिन इस बार कुछ नया भी मिले। और रजनीकांत जैसे सुपरस्टार के मामले में तो एक्सपेक्टेशंस और भी अलग हो जाती हैं। उनके फैंस के लिए सिर्फ एक्शन नहीं, उनका स्टाइल, उनकी डायलॉग डिलीवरी और वो खास स्क्रीन प्रेजेंस भी एक्सपीरियंस का हिस्सा बन जाता है। वैसे फिल्मों में भी इंटरेस्टिंग पार्ट है कि कुछ एक्टर्स अपनी एक्टिंग से लोगों को इम्प्रेस करते हैं और कुछ अपनी कॉमेडी से, और कुछ सिर्फ स्क्रीन पर आते ही पूरा माहौल बदल देते हैं। सब आपकी बारी है, आपके हिसाब से इंडियन सिनेमा का सबसे आइकॉनिक मास मोमेंट कौन सा है? कोई रजनीकांत सीन, कोई सलमान खान की एंट्री, कोई शाहरुख खान का डायलॉग, या फिर कोई ऐसा मोमेंट जिसे देखकर थिएटर में सीढ़ियां बजने लग जाए? सो आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू मूवी लवर्स के लिए, क्या सीक्वल को ओरिजिनल फिल्म से बेटर होना चाहिए या ओरिजिनल की लेगेसी को बनाए रखना ही काफी है? यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, नंबर है 3311106 3. स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

और अंदर एक लेटर है। आपको हॉगवर्ट्स स्कूल ऑफ विचक्राफ्ट एंड इसमें एडमिशन मिल गया है, मतलब हैरी पॉटर वाले स्कूल में। अब बताइए पहले रिएक्शन आपका क्या होगा, खुशी, शौक, या फिर सबसे पहले आप मम्मी को बुलाकर कहोगे कि देखो मैंने कहा था ना मैं नॉर्मल बच्चा नहीं हूँ। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM, मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम यस ऑफ कोर्स लाइफ मस्त है। हैरी पॉटर की दुनिया की यही तो सबसे खूबसूरती है, किताबों ने रीडर्स को एक ऐसी दुनिया दी जहाँ मैजिकल स्पेल्स हैं। मूवी की अगर मैं बात करूँ तो आपने देखा ही है, मूविंग स्टेयरकेस हैं, टॉकिंग पोर्ट्रेट्स हैं और एक ऐसा स्कूल जहाँ हर दिन कोई ना कोई एडवेंचर हो सकता है। लेकिन अगर आप हॉगवर्ट्स चाहते हो तो कौन सा सब्जेक्ट चुनते? यहाँ ना एक छोटी सी गलती से पूरी क्लास में धुआं भर सकता है। चार्म्स, यहाँ जहाँ पर ऑब्जेक्ट्स को मैजिक से काम कराया जा सकता है, जहाँ डिफेंस अगेंस्ट द डार्क आर्ट्स और जहाँ हर लेसन में कुछ नया खतरा सामने आ सकता है, ये सारी चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग लगती हैं। सो मुझे लगता है हम में से कई सारे लोग अपने स्कूल डेज में ऐसी दुनिया इमेजिन करते थे जहाँ पढ़ाई सिर्फ एग्जाम्स और होमवर्क तक लिमिटेड नहीं होती, जहाँ हर कॉरिडोर के पीछे एक मिस्ट्री हो सकती है। और शायद यही बुक की पावर है। अच्छी कहानी ना आपको सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं देती, मतलब वो आपको एक ऐसी दुनिया में लेकर जाती है जो कुछ समय के लिए आप अपनी रियल लाइफ से बाहर निकल जाते हो। सो आज मैं इसकी इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि हॉगवर्ड का एडमिशन लेटर मिल जाए आपको तो पहले आप किसे बताओगे सबसे पहले, और कौन सा मैजिक स्पेल का आप अपनी रियल लाइफ में यूज करना चाहोगे। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, मैं हूँ मुस्कान, स्टे ट्यून, नंबर सेम है 3311106 3, स्टे ट्यून, जियो बिंदास।

0: सो आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू. कई बार फिल्मों का हीरो तो ठीक लगता है, लेकिन घर आने के बाद हमें विलन के डायलॉग्स बोलने में बहुत मजा आता है, ऐसा क्यों? कभी कोई विलन अपनी एंट्री से याद रह जाता है, कभी उसका ड्रेसिंग स्टाइल, कभी उसकी इंटेलिजेंस, और कभी उसका वो कॉन्फिडेंस कि पूरी दुनिया उसके खिलाफ हो, फिर भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता. अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम विलन की गलतियां पसंद करते हैं, लेकिन एज अ कैरेक्टर वो कोई कई बार ना बहुत इंटरेस्टिंग लगता है. हीरो अक्सर कहानी में सही काम करने की कोशिश कर रहा होता है और उसे रूल्स फॉलो करने होते हैं, लोगों को बचाना होता है और सही गलत के बीच में खड़ा होना होता है. वहीं विलन्स की कहानी में कई बार मिस्ट्री होती है, ये ऐसा क्यों सोचता है, इसके डिसीजंस के पीछे क्या है, यहां तक कैसे पहुंच जाता है, हम ये सब देख रहे होते हैं. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल एट 106.3 FM. मैं हूं मुस्कान और ये है लाइफ मस्त है. और जब किसी कैरेक्टर की राइटिंग स्ट्रांग हो तो ऑडियंस उसके बारे में जानना चाहती है, भले ही वो कैरेक्टर गलत काम कर रहा हो. सो सिनेमा में विलन का काम सिर्फ हीरो को परेशान करना नहीं होता, एक अच्छा विलन हीरो को चैलेंज करता है और कहानी को इंटरेस्टिंग बनाता है. अगर सामने कोई स्ट्रांग ओपोनेंट ना ही हो तो हीरो भी जीत भी उतनी एक्साइटिंग नहीं लगती, राइट? लेकिन यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग बात है, कभी कभी हमें विलन का कॉन्फिडेंस अच्छा लगता है, लेकिन रियल लाइफ में उसी तरह का बिहेवियर किसी इंसान में दिखे तो हम उसे दूर भागने लगते हैं. यानी स्क्रीन पर जो चीज एंटरटेनिंग लगती है रियल लाइफ में एक्सेप्टेबल नहीं होती. सो एक और ट्रिकी सवाल है, क्या एक ग्रेट विलन के बिना ग्रेट हीरो बन सकता है? मुझे लगता है इस पर तो पूरी मूवी डिबेट हो सकती है. व्हाट डू यू से? यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, मैं हूं मुस्कान, नंबर सेव है 3311063. स्टे ट्यून, जियो बिंदास.
1: पूरे देश को पगला दूंगा, अभी तो कुछ पेश किया है, सुनो. नाम या काम? नाम
2: मनी फॉलोज माय ब्रदर.

0: यार आजकल फैशन में बार बार ना वो पुरानी चीजें कूल लगने लग गई हैं। यू आर लिस्निंग रेडियो ऑल ऑफ 106.3 FM है, हुस कान और शो का नाम है लाइफ मस्त है। जिन चीजों को कभी हम पुराना समझ कर रख देते थे ना, वही अब दोबारा से कूल बन रही है। रेट्रो डिजिटल कैमरास, वियर्ड एयरफोन्स, ठीक है, पुराने बॉलीवुड के गाने, बैकी जीन्स, कलरफुल एसेसरीज और यहाँ तक कि 2000 के टाइम का वो दौर फिर से लोगों की अटेंशन में है। अब जरा याद कीजिए जब हम किसी के पास स्मार्टफोन्स नहीं हुआ करते थे, फोटोज खींचने के लिए डिजिटल कैमरा होता था, गाने सुनने के लिए म्यूजिक प्लेयर या फिर ईयरफोन्स होते थे और किसी से मिलने का प्लान बन जाए तो हर 5 मिनट में लाइव लोकेशन भेजने का ऑप्शन भी नहीं था। आपको जगह और टाइम याद रखना पड़ता था और अगर दोस्त लेट हो जाए तो बस इंतजार कीजिए, कोई व्हाट्सएप मैसेज नहीं कि बस पहुंच रहा हूं और वो अभी घर से निकला भी ना हो। तो सवाल यह है कि पुरानी चीजें वापस पॉपुलर हो क्यों रही हैं? एक वजह तो नॉस्टैल्जिया हो सकती है। जब हम किसी को पुराने गाने, फोटोज या फैशन ट्रेंड को देखते हैं तो उसके साथ जुड़ी मेमोरीज भी वापस आ जाती हैं। और कभी कभी कोई पुरानी चीज इसीलिए अच्छी लगती है क्योंकि वो हमें उस समय की याद दिलाती है जब हमारी जिंदगी थोड़ी अलग थी। लेकिन हर कमबैक सिर्फ नॉस्टैल्जिया की वजह से नहीं होता, फैशन ट्रेंड्स बार बार बदलते हैं, नई जनरेशन पुराने स्टाइल को अपने तरीके से अपनाती है और ब्रांड्स भी पुराने डिजाइन से इंस्पिरेशन लेते हैं। सो मुझे लगता है कुछ चीजें ना सच में वापस आनी चाहिए, जैसे बिना हर पल फोन चेक किए दोस्तों के साथ बैठना और बिना फिल्टर वाली रैंडम फोटोज। अब आप मुझे बताइए, अगर आपको 2000s की कोई एक ऐसी चीज वापस लाने का मौका मिले तो आप क्या चुनोगे? पुराने गाने, ऑफ कोर्स वो तो है ही, फैशन ट्रेंड या फिर कीपैड वाले फोन्स, या फिर वो जमाना जब ऑनलाइन होने के लिए घर में कंप्यूटर की बारी का इंतजार करना पड़ता था। यू आर लिस्निंग रेडियो ऑल ऑफ, नंबर है 3311063। स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑल ऑफ पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द

सो फ्रेंड्स, महीने के स्टार्टिंग में सैलरी क्रेडिट होने का नोटिफिकेशन आए तो मूड एकदम अलग हो जाता है। ऐसा लगता है कि चलो भाई अब सब मैनेज हो जाएगा, लेकिन फिर रेंट, ग्रोसरीज, बिल, ट्रांसपोर्ट, शॉपिंग, सब्सक्रिप्शंस और दोस्तों के साथ एक दो आउटिंग, और अगर किसी महीने किसी का बर्थडे आ गया तो बस कुछ ही दिनों में बैंक बैलेंस हमें रियलिटी चेक देने लग जाता है। सबसे मजेदार बात यह है कि हम कई बार ये याद भी नहीं कर पाते कि कोई बड़ी शॉपिंग नहीं की, कोई बहुत एक्सपेंसिव चीज़ नहीं खरीदी, फिर भी महीने के आखिरी में बैलेंस देखकर लगता है कि कैसे, मतलब कैसे हो गया ये। सो एक्चुअली में हमारे बजट पर सिर्फ बड़े खर्चों का असर नहीं होता, छोटे छोटे रिकरिंग एक्सपेंसिव भी इसमें जुड़ जाते हैं। रोज की कॉफी, ऑनलाइन ऑर्डर्स, छोटी मोटी शॉपिंग और वो सब्सक्रिप्शन जिनका हमें इस्तेमाल भी याद नहीं कि हमने कब किया था। सो एक सिंपल सा तरीका है, एक महीने तक अपने एक्सपेंस को 3 कैटेगरीज में बांट दो। पहला नीड्स, जिसकी रेंट, ग्रॉसरी, बिल्स। दूसरा वांट, जैसे कि बाहर का खाना, शॉपिंग और एंटरटेनमेंट। और तीसरा फ्यूचर यू, यानी सेविंग्स और वो पैसे जो आप आने वाले किसी गोल के लिए अलग रख रहे हो। बाय द वे, मैं आज इसके बारे में इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि इंडिया में यूजुअली लोग सेविंग्स को लेकर बहुत पर्टिकुलर हो गए हैं और आज का दिन ना लोग सैलरी डे भी मनाते हैं। सो आई थॉट कि हम इंडियंस हैं यार, हम बात तो कर ही सकते हैं इस बारे में। सो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप अपने ऊपर खर्चा बंद कर दो, ठीक है। पैसे कमाने का मतलब ये है कि अच्छी जिंदगी जीना, ठीक है, दिस इज वॉट आई बिलीव। तो आप डिसाइड कर सकते हो कि कहां खर्चा करना है, आपके लिए वर्थ क्या है, थोड़ा एडजस्टमेंट किया जा सकता है या नहीं। और एक बात, बजट बनाना ना सिर्फ तब जरूरी नहीं होता जब सैलरी कम हो, अच्छी इनकम होने पर भी बिना प्लानिंग के ना मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल है, इसीलिए आपको बजट तो बनाना चाहिए। सो आपकी सैलरी का सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो कहां जाता है आप मुझे बताओ। और अगर आपसे पूछा जाए कि इस महीने एक एक्सपेंस कम करना हो तो आप किस चीज से शुरू करोगे। यू आर लिस्निंग रेडियो ऑलिव, मैं हूं मुस्कान, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास। नंबर सेम है 3311106।

0: सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: अपने लव्ड वंस को पैसे भेजना हुआ और भी इजी। कतर में पहली बार अलदार एक्सचेंज लाया है वीजा डायरेक्ट, जिससे पैसे सीधा फैमिली के बैंक अकाउंट में, फास्ट, इजी और रिलायबल। विजिट कीजिए अलदार की 38 ब्रांचेस या डाउनलोड कीजिए अलदार एक्सचेंज ऐप नाउ।

0: फोन उठाइए और सोचिए आपने कितने एप्स के पेड सब्सक्रिप्शन ले रखे हैं। एक स्ट्रीमिंग ऐप मूवी के लिए, दूसरा म्यूजिक के लिए, क्लाउड स्टोरेज अलग और प्रीमियम एडिटिंग ऐप, और फिर एक फ्री ट्रायल जैसे आपने सोचा था कि बाद में इसे कैंसिल कर दोगे, वो बाद में कभी आया ही नहीं, और हर महीने उसका अमाउंट जो है वो कटता है, और कई सारे और भी बहुत सारे सब्सक्रिप्शन होंगे आपके। सो इसे समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लो आपने एक ऐप का फ्री ट्रायल लिया, उस टाइम आपको उसकी जरूरत थी इसीलिए आपने साइन अप कर लिया, ट्रायल खत्म हुआ, पेड सब्सक्रिप्शन शुरू हो गया। अब आप ऐप शायद खोलते हो कि नहीं वो भी आपको पता नहीं, लेकिन पेमेंट ऑटोमेटिकली कट जाता है। ऐसे छोटे खर्चों को पहचानना ना इतना डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि हर बार हमें मैनुअली पैसे देने ही नहीं पड़ते, अपने आप कट जाते हैं। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ओवर 106.3 FM, मैं हूं मुस्कान और शो का नाम है लाइफ मस्त है। वी वर टॉकिंग अबाउट सैलरी, तो मैंने सोचा भाई ये छोटी छोटी चीजें कितना मैटर करती है, इसीलिए एक छोटा सा डिजिटल क्लीनअप चैलेंज करते हैं आज। अपने फोन के सब्सक्रिप्शन और पेमेंट सेटिंग चेक कीजिए, देखिए कि कौन सी सर्विसेज आप रेगुलरली इस्तेमाल करते हो और कौन सी कभी कभी और कौन सी बिल्कुल भी नहीं। लेकिन ध्यान रखिएगा, हर सब्सक्रिप्शन बुरा नहीं होता। अगर आप किसी सर्विस का यूज कर रहे हो और आपको वैल्यू मिलती है तो फिर ठीक है, आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। मकसद सिर्फ उन पेमेंट्स को पहचानना है जिनके बारे में आप भूल चुके हो। और एक बात, फ्री ट्रायल लेते टाइम कैंसिलेशन डेट याद रखना, अच्छी आदत है, और कभी कभी फ्री में शुरू हुई चीजें बजट में परमानेंट गेस्ट बन जाती हैं। सो आप मुझे बताइए कि आपने कभी ऐसी ऐप या सर्विस के यू नो अमाउंट पे किए हैं जबकि आपको याद ही नहीं कि उसका सब्सक्रिप्शन आपने कब लिया हुआ है। सो आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू कि आपके हिसाब से कौन सी पेड सब्सक्रिप्शन सच में वर्थ है और कौन सी सिर्फ आपके बजट को बिगाड़ती है और आप भूल गए हो उसे कैंसिल करना। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, नंबर है 3311063। स्टे ट्यून्ड, जियो
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द

0: सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: The all new GAC GS7 2027 अब डोमेस्को GAC शोरूम में अवेलेबल है। This premium SUV is perfect for city drives और आपकी outdoor glamping adventures के लिए। Get an incredible 1020 km combined range, plus customize the animated LED headlights. All new GAC GS7 2027 starting from just 129,900 रियाल।
2: तो इंतजार किस बात का? Book your test drive today. Visit the GAC showroom at East Industrial Road. Call 800

सो इस हफ्ते अगर मैं बात करूं तो 16th ऑफ अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे है और इस हफ्ते हम खाने की वैल्यू पर थोड़ी सी बात करना चाहते हैं. सो आई थिंक फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि FAO हर साल इस दिन फूड और एग्रीकल्चर से जुड़े जो ग्लोबल इश्यूज हैं उस पर अवेयरनेस बढ़ाते हैं. लेकिन अब आप सोचोगे आज तो 12 ही तारीख है भाई, खाने की बात तो कभी भी की जा सकती है ना, मैं कोई बड़ा सा लेक्चर नहीं दे रही हूँ, बस अपनी किचन से शुरू करते हैं. कभी ऐसा हुआ है कि आपने ग्रॉसरी शॉपिंग की बहुत बहुत एनर्जी के साथ, सब्जियां, फ्रूट्स, दूसरी चीजें सब खरीद लिया, फिर कुछ दिन बाद फ्रिज खोला और देखा कि कुछ चीजें तो यूज ही नहीं हुई, या डिनर में खाना बच गया, सबने कहा कि कल खा लेंगे लेकिन अगले दिन वो खाना किसी ने खाया ही नहीं. ये बहुत कॉमन सिचुएशन है और कई बार तो फूड वेस्ट किसी की जानबूझकर की गई गलती होती भी नहीं है, बस प्लानिंग नहीं होती और हम मतलब ऐसे ही वेस्ट हो जाता है. सो कुछ सिंपल सी आदत है जो आपको करनी चाहिए, ग्रॉसरी शॉपिंग से पहले फ्रिज चेक करना, एक छोटी शॉपिंग लिस्ट बनाना और छोटे छोटे लेफ्ट ओवर्स जो आपके बच जाते हैं उनका स्टोर करके यूज करना. फूड सेफ्टी भी इंपॉर्टेंट है और हर बचा हुआ खाना लंबे टाइम तक सेफ नहीं होता, इसीलिए उसे सही तरीके से रेफ्रिजरेट करना भी उतना ही जरूरी है. सो इंटरेस्टिंग बात यह है कि कई घरों में बचपन से हमें सिखाया जाता है कि खाने की कद्र करनी चाहिए, लेकिन उस सीख को हम रेगुलर हैबिट में लाना उतना जरूरी समझ ही नहीं पा रहे हैं. सो आपके घर में सबसे ज्यादा कौन सी चीज है जो बच जाती है और आप सोचते हो कि यार ये कल यूज कर लेंगे. सुन रहे हैं आप रेडियो ऑलिव, नंबर है 3311063. स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास.

कभी कभी ना जिंदगी में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती, बस छोटी छोटी चीजें एक साथ होने लगती हैं और इंसान के मुंह से निकल जाता है बस अब और नहीं। सुबह इंटरनेट स्लो है, फिर ओटीपी नहीं आ रहा, फिर किसी जरूरी काम के लिए निकलते हैं और ट्रैफिक मिल जाता है और घर पहुंचकर सोचते हो कि अब आराम करेंगे, तभी कोई कह देता है कि एक छोटा सा काम था, और वो छोटा सा काम छोटा होता ही नहीं है। सो आज है एक ऐसा दिन जिसे कहते हैं इंटरनेशनल मूवमेंट ऑफ फ्रस्ट्रेशन स्क्रीन डे। सो ये भी लिस्टेड है भाई, इसे एक मजेदार एक्सक्यूज समझिए कि आज अपनी एवरीडे फ्रस्ट्रेशन पर खुलकर हंसा जाए। इसे किसी ऑफिशियल यूएन डे की तरह नहीं बल्कि को की ऑब्जर्वेशन की तरह बेटर होगा समझना। लेकिन मजाक से हटकर मैं देखूं तो फ्रस्ट्रेशन हमारी डेली लाइफ का हिस्सा है। जब चीजें हमारी उम्मीद के अकॉर्डिंग नहीं होती, जब हम टायर्ड होते हैं, जब बहुत सारी बातें एक साथ हो जाती हैं, तो छोटी सी परेशानी भी ना बहुत बड़ी लगने लग जाती है। ऐसे में कभी कभी थोड़ा रुकना, गहरी सांस लेना, कुछ देर के लिए सिचुएशन से हटना, इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता। और हर प्रॉब्लम को उसी सेकंड सॉल्व करना जरूरी तो बिल्कुल भी नहीं है, ना ही किसी को रिप्लाई करना, ना कुछ डिलीट करना, कुछ नहीं, आप शांति से बैठ जाओ। सो यू टेल मी, फ्रस्ट्रेशन का थोड़ा फनी तरीके से अगर लिया जाए तो आपका एवरीडे लाइफ की किसी एक चीज पर ड्रामेटिक मूवी स्टाइल स्क्रीम करने का मौका मिले तो आप किस पर करोगे? For now, I have to say कि मुझे जाना होगा। कल सेम टाइम सेम जगह पर मिलेंगे लाइफ मस्त है लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुनते रहिए रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून्ड, बाय, टेक केयर विद सुपर हिट ट्रैक्स, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

0: अपने लव्ड वंस को पैसे भेजना हुआ और भी इजी। कतर में पहली बार हलदार एक्सचेंज लाया है वीजा डायरेक्ट, जिससे पैसे सीधा फैमिली के बैंक अकाउंट में, फास्ट, इजी और रिलायबल। विजिट कीजिए हलदार की 38 ब्रांचेस या डाउनलोड कीजिए हलदार एक्सचेंज ऐप।
1: अनलॉक योर चाइल्ड्स पोटेंशियल विद ब्रिलियंट कतर। 15 years of excellence and trust. Expert coaching for NEET, JEE and CBSE. Offline and online options. Our 6th branch is now open at Alvakra. For more details, call 500-56123.
2: Hi everyone, I am Arman Malik. 106.3 FM, Radio Olive. Jio Bindas.

0: ऑलिव रिचार्ज हर दोपहर 2 से 5 रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास।
1: This hour is brought to you by
2: Malabar Gold and Diamonds में सिर्फ 25% एडवांस देकर अपना गोल्ड प्राइस लॉक करें। विजिट योर नियरेस्ट मलाबार गोल्ड एंड डायमंड शोरूम नाउ।

आप सभी का स्वागत है स्वागत है स्वागत है स्वैग के साथ स्वागत है। यह रेडियो ऑलिव 106.3 FM, मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। और चलिए शुरू करते हैं ऑलिव रिचार्ज को, जहां पे एक साथ बैठकर गुफ्तगू करेंगे, गाने सुनाएंगे, गुनगुनाएंगे, ढेर सारे किस्से, खबरें, कहानियां शेयर करेंगे एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपके साथ वक्त बिताएंगे। तो धीरे धीरे धीरे हम भी अपने बातों का सिलसिला शुरू करते हैं, आप भी अपने मैसेजेस का सिलसिला शुरू कीजिए। 3311063 ये है हमारा नंबर, तत्काल प्रभाव से तुरंत से पहले अभी के अभी कर दीजिए मैसेज। और यही बोलते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: आप सभी का फिर से एक और बार स्वागत है। आप सुन रहे हो रेडियो ऑलिव 106.3 FM। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव और यहां पे हम आपके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो है शेयर करना चाहते हैं। रिसेंटली एक इंटरव्यू शायद आपने देखा होगा बेसिकली, जहां पे रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा दोनों आए थे, वो लोग बात कर रहे थे, जहां पे रश्मिका मंदाना ने बोला था कि यार चाहे रिलेशनशिप के किसी भी स्टेज में हो, अर्ली स्टेज में हो, लेटर स्टेज में हो, शादी हो जाए, बच्चे हो जाए, कहीं पे भी हो, यू हैव टू पुट इन सम एफर्ट्स। वो एफर्ट्स डालने ही पड़ेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वही एफर्ट्स जो है रिलेशनशिप को आगे लेके जाते हैं। कभी कभी एक पॉइंट में ना थोड़ा हम इसे कंप्लेसेंट हो जाते हैं, जहां पे हमें लगता है कि हाँ ठीक है यार चल रहा है ना, कोई बात नहीं करिए, मगर नहीं, वहीं पे हमें एफर्ट्स डालने पड़ते हैं और उसी के थ्रू जो है हम इस रिलेशनशिप को और बढ़िया तरीके से आगे ले जा सकते हैं। और यही बात बताते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: सर क्या पर ये बात है।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। अपनों को पैसे भेजना हुआ और भी आसान, अलदार एक्सचेंज का वीजा डायरेक्ट सीधा आपके परिवार के बैंक अकाउंट में। कतर में पहली बार। अनलॉक योर चाइल्ड्स पोटेंशियल विद ब्रिलियंट कतर। 15 years of excellence and trust. Expert coaching for NEET, JEE and CBSE. Offline and online options. Our 6th branch is now open at Alvatra. For more details, call 500-56123.
1: Only laga aur ho ja recharge.
0: Olive Recharge. Olive Recharge. Radio Olive 106.3 FM par. Jio Bindas.
1: Olive Recharge.
2: This hour is brought to you by
3: Malabar Gold and Diamonds mein sirf 25% advance dekar apna gold price lock karein. Visit your nearest Malabar Gold and Diamonds showroom now.

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहां पे एक बहुत ही एज ओल्ड एक स्टेटमेंट जो है मैं बताना चाहूंगा, उसके साथ साथ कितना अभी भी वो एक स्टेटमेंट रिलेवेंट है उसके बारे में बात करना चाहूंगा। कहते हैं कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अगर हम सक्सेस पाना चाहते हैं तो हमें अपने कम्फर्ट को खोना पड़ेगा। अगर हम कहीं पहुंचना चाहते हैं तो हमें कहीं से निकलना पड़ेगा, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और खास बात यह है कि अभी भी आजकल के ज़माने में ये बहुत इंपॉर्टेंट है और अभी भी रिलेवेंट है। चाहे कुछ भी हम करना चाहते हो, कोई भी चीज़ हो, अगर हम स्पोर्ट्स में अच्छा बनना चाहते हो, म्यूजिक में अच्छा बनना चाहते हो, पढ़ाई में अच्छा बनना चाहते हो, काम में अच्छा बनना चाहते हो, वी हैव टू लेट गो ऑफ सर्टन हैबिट्स, सर्टन बिहेवियरल ट्रेट्स, देन ओनली हम आगे बढ़ पाते हैं। देखिए, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के लिए हमें एफर्ट्स तो डालने पड़ेंगे, है ना। और एक और चीज़ है, कभी कभी जिस चीज़ की ओर हम बढ़ रहे हैं हमें उसकी तरह अपने आप को बनाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, अगर आपको एक टॉप टीयर एथलीट बनना है तो एक टॉप टीयर एथलीट बनने के क्वालिटीज़ क्या क्या हैं, या फिर उस टॉप टीयर एथलीट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, आपको अपने अंदर वो ढालने पड़ेंगे। और जब हम पूरी तरीके से तैयार होते हैं तो वो अपॉर्चुनिटी चल के हमारे पास आती है। और यही बात याद दिलाते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं, जियो बिंदा।

आप सभी का फिर से एक और बार स्वागत है। आप सुन रहे हो रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। तो जापान में भाई काफी इंटरेस्टिंग एक चीज हो रही है। वहां पे स्लीप कंपटीशन चल रहा है जहां पे जीतने वालों को 14,000 यूएस डॉलर्स तक मिल सकते हैं। सो बेसिकली स्लीप कंपटीशन में जो है ऐसा नहीं है कि कौन सबसे ज्यादा सो सकता है वो देखा जाएगा, नहीं, लोगों के स्लीप डेटा मेट्रिक्स इन सबको कंपेयर किया जाएगा और उसके बेसिस में सबसे अच्छा स्लीप रूटीन मेंटेन करने वाला कौन है उसको जो है ये अवार्ड मिलेगा। और ऐसा नहीं कि जो सबसे ज्यादा सोएगा वो जीत जाएगा, नहीं, स्लीप भी अगर हम डिसिप्लिन तरीके से लेते हैं तो हमारे रिकवरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए ये जो है कंसिस्टेंटली कौन अपने स्लीप रूटीन को अच्छे से मेंटेन कर सकता है वो देखा जाएगा। और ये जापान में इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार जापान में लोग जो है बाहर सोते हैं, जो काफ़ी एक्सेप्टेड भी है, और वहाँ पे वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, लोग नींद को छोड़ के काम की ओर ज़्यादा फोकस करते हैं। तो अच्छे स्लीपिंग हैबिट्स को प्रमोट करने के लिए ऐसे कॉम्पिटिशन्स को जो है वहाँ पर बढ़ावा दिया जा रहा है। और यही बताते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: आप सभी का फिर से एक और बार स्वागत है। आप सुन रहे हो रेडियो ऑलिव 106.3 FM। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहां पे मैं एक वेबसाइट के बारे में बताना चाहूंगा जहां पे हम डिफरेंट डिफरेंट स्टार्टअप्स के बारे में जो है रीड कर सकते हैं, मगर ये सारे स्टार्टअप्स जो है फेल्ड स्टार्टअप्स हैं, इसलिए इस वेबसाइट को स्टार्टअप्स का ग्रेवयार्ड कहा जाता है, जहां पे आपको इन सारे स्टार्टअप्स के बारे में जो है डिटेल मिल जाएगा। और मैं सोच रहा था कि यार कौन होगा ये जो इसको भी डॉक्यूमेंट करके रख रहा है, बट एक्चुअली करना चाहिए क्योंकि कभी कभी दूसरों के मिस्टेक्स से हम चीजें सीख सकते हैं। सारी गलतियां खुद करके एक्सपेरिमेंट करने के लिए अगर बैठ जाएं तो भाई जिंदगी तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। नहीं नहीं, कभी कभी दूसरों के मिस्टेक से भी सीखना बहुत जरूरी है ताकि वो गलती हम ना करें। और यही बात बताते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आप सुन रहे हो रेडियो ऑल ओवर 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव और यहां पे जावेद सर की एक रील के बारे में बात करना चाहूंगा। देखिए, जावेद अख्तर का अगर एक रील दिखता है आपको तो उसे स्किप नहीं करना होता, उसे देखना होता है। और उसमें उन्होंने बोला है कि आप अगर किसी इंसान को छत ना दें, उसे खाने के लिए खाना ना दें, मगर उससे इज्जत से मीठी बोली के साथ बात करेंगे तो आपको पसंद करेगा। और उसी की जगह अगर आप इंसान को खाना दे रहे हो, उसको रहने के लिए घर दे रहे हो, उसको छत दे रहे हो, सब कुछ दे रहे हो, मगर उससे बहुत गंदी तरीके से बात करोगे, उसे इज्जत नहीं करोगे, वो आपको पसंद नहीं करेगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि जब हम लोगों से इज्जत के साथ बात करते हैं, चाहे हम उन्हें फिजिकली कुछ ना दें, कोई मटेरियल गिफ्ट ना दें, मगर जब इज्जत से बात करते हैं तो उनके दिल में भी हमारे लिए जगह बनती है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है लोगों से इज्जत से बात करना, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर बैकग्राउंड। और यही बात बताते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

आप सभी को फिर से एक और बार स्वागत है। आप सुन रहे हो रेडियो ऑल ओवर 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव और यहां पे एक मीम के बारे में आपके साथ जो है बात शेयर करना चाहूंगा। मैंने एक मीम देखा था जहां पे लिखा गया था कि यूएसए के मैथ ओलंपिया टीम ने चाइना के मैथ ओलंपिया टीम को 30 साल के बाद हराया और उस टीम की फोटो उन्होंने डाली थी और उस टीम में सारे चाइनीज लोग थे। सो बेसिकली मॉडर्न प्रॉब्लम्स रिक्वायर मॉडर्न सॉल्यूशंस। अगर हम उन्हें इस तरीके से हरा नहीं पाए तो हम उन्हें उनके तरीके से हराएंगे करके। नाइस। और यही बताते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: स्पोर्टिंग हिस्ट्री में सबसे बिगेस्ट राइवलरीज में से एक जो है ऑफिशियली खत्म हो चुकी है, मगर एक प्लेयर को हैप्पी एंडिंग और दूसरे के साथ थोड़ा सा बुरा हुआ। बात कर रहा हूं मैं मेसी वर्सेस रोनाल्डो के गोट डिबेट के बारे में, जहां पे बहुत सारे लोग जो है काफी भावुक हो जाते हैं, इमोशनल तरीके से इस बारे में बात करते हैं, मगर जरा ऑब्जेक्टिव तरीके से इसको देखते हैं। दोनों प्लेयर्स ने करीब 20 साल तक या फिर 20 साल से ऊपर जो है अपना बेस्ट परफॉर्म किया है, अपने नेशनल टीम के लिए अपना बेस्ट दिया है, सब कुछ किया है, बहुत सारे लोग उन्हें पसंद करते हैं, उनके बहुत बड़ी तादाद में जो है फैन फॉलोइंग है, और लायनल मेसी को जो है काफी अच्छा डिग्निफाइड एक बहुत ही बढ़िया सा जो है एक फेयरवेल मैच मिला, मगर रोनाल्डो के साथ थोड़ा सा गलत हुआ। उन्होंने काफी ऑनेस्टली जो है उसके बारे में पोस्ट डाला था, ये सब डाला था, एंड पोर्चुगल के फुटबॉल फेडरेशन ने जो है उन्हें सस्पेंड कर दिया है अंटिल फर्दर नोटिस। और रोनाल्डो ने बोला कि देखिए भाई, मैं अपने इससे खुश हूँ, मुझे फेयरवेल गेम मिले ना मिले फर्क नहीं पड़ता करके, मगर मुझे लगता है कि यार ये नहीं करना चाहिए था। उनके साथ थोड़ा और डिग्निफाइड तरीके से जो है फेडरेशन थोड़ा सा ये कर सकता था, बट एनीवे फेडरेशन के अपने लॉज हैं, अपने नियम हैं। और वैसे भी एक बात तो बहुत श्योर है कि रोनाल्डो जैसा प्लेयर पोर्चुगल को अब मिलेगा नहीं मिलेगा, मुझे नहीं लगता कि अब कुछ टाइम पे तो नहीं मिलने वाला, जो इम्पैक्ट उनका था पिच में। और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा है लोगों को पोर्चुगल को सपोर्ट करते हुए ओनली बिकॉज ऑफ रोनाल्डो, क्योंकि वो बंदा अगर निकल गया तो कोई पूछेगा नहीं उस टीम को, और वही होने वाला है। और यही बताते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है।

0: 106.3 FM. Pay just 10% advance at Joya Lucas to book your favorite jewelry now.
1: Now? We still have time for the festive season.
0: That's exactly why you should secure the best gold right now. Book in advance at Joya Lucas and protect yourself from gold price hikes. Plus, if the gold price drops, you get the lowest rate. And the best part, you can do it in-store or with just a click on the Joya Lucas app. Advance booking offers valid until 7th November only. Joya Lucas, world's favorite jeweler.
2: अपने loved ones को पैसे भेजना हुआ और भी इजी. कतर में पहली बार अलदार एक्सचेंज लाया है वीजा डायरेक्ट, जिससे पैसे सीधा फैमिली के बैंक अकाउंट में. फास्ट, इजी और रिलायबल. विजिट कीजिए अलदार की 38 ब्रांचेस या डाउनलोड कीजिए अलदार एक्सचेंज ऐप नाउ.
3: टफ काम और भी आसान. कार्नल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स. मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले. विजिट कार्नल ग्रुप नाउ.
4: ऑलिव लगा और हो जा रिचार्ज. ऑलिव रिचार्ज.
5: ऑलिव रिचार्ज. रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर. जियो बिंदास.
4: ऑलिव रिचार्ज.
6: This hour is brought to you by...
7: It's the season of jewelry and the season of offers at Malabar Golden Diamonds. Diamond and precious gem jewelry purchase per pie, free cash vouchers.

वेलकम बैक, यू लिसनिंग टू रेडियो ऑल इन 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहां पे हम याद दिलाना चाहेंगे आपको कि अगर आपने अभी तक रेडियो ऑलिव के इंस्टाग्राम पेज को फॉलो नहीं किया तो सीधा जाइए इंस्टाग्राम पर radioolive.qa सर्च कीजिए। वहां पे अगर फॉलो बटन दिख रहा है तो फॉलो कीजिए, और फॉलोइंग दिख रहा है तो बहुत बढ़िया। और आप हमारे कंटेंट को चेकआउट कीजिए, पोस्ट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, हमें सुनते हुए स्टोरी बनाकर डालिए इंस्टाग्राम पे, हमें टैग कीजिए, हम उस स्टोरी को रीशेयर करेंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, कई सारे बढ़िया बढ़िया डिजिटल कॉन्टेस्ट जो है हमारे पेज पर आते हैं, आप उसके साथ भी इंटरेक्ट कीजिए, आपको जीतने के मौके मिलेंगे, वो भी बढ़िया बढ़िया गिफ्ट्स। और यही बात बोलते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास
1: Party insurance may be a requirement, but with Bima, you get so much more. Get 24/7 roadside assistance with towing, recovery, tire change, fuel delivery, battery boost, and lockout support. Split your payment into 4 installments and stay claim-free to enjoy 7% cashback. Plus, get a replacement car for up to 3 days, a one-time airport drop-off, and vehicle inspection transportation. Choose Bima, third part of liability today. Call 800-786 or WhatsApp 740-50555 or visit bima.com.qa. बीमा फॉर योर पीस ऑफ माइंड टीएनसी अप्लाई
2: टफ काम और भी आसान कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले विजिट कार्मल ग्रुप नाउ
3: लगा और हो जा रिचार्ज
0: ऑलिव रिचार्ज रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास
4: This hour is brought to you by
5: It's the season of jewelry and the season of offers at Malabar Golden Diamonds. Diamond and precious gem jewelry purchase par paye free cash vouchers.

भाई धीरे धीरे टाटा बाबा गुड बाय करके निकलने का वक्त आ चुका है, क्योंकि यहाँ पे 5 बजने वाले हैं और 3 घंटे खत्म हो चुके हैं। मगर जाने से पहले यही दरख्वास्त है आपसे कि अब अपना ख्याल रखना, अपने खास लोगों का ख्याल रखना और हमें जरा दुआओं में याद रखना। फिर मिलेंगे चलते चलते, तब तक के लिए हंसते रहिए, खुश रहिए, खिलखिलाते रहिए और कहते रहिए जियो बिंदास। रेडियो

अपने लव्ड वंस को पैसे भेजना हुआ और भी इजी। कतर में पहली बार अलदार एक्सचेंज लाया है वीजा डायरेक्ट, जिससे पैसे सीधा फैमिली के बैंक अकाउंट में, फास्ट, इजी और रिलायबल। विजिट कीजिए अलदार की 38 ब्रांचेस या डाउनलोड कीजिए अलदार एक्सचेंज ऐप नाउ।

0: तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे सिमरन के साथ जबरदस्त इवनिंग रोज शाम 5 से 9 ओनली ऑन 106.3 रेडियो ऑलिव जियो बिंदास
1: आरजे सिमरन के साथ।
0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर 1 रेडियो स्टेशन रेडियो ऑलिव 106.3 FM।

की धड़कन क्या कह रही है? और अपनी ये यारी जो है वो चार घंटे चलने वाली है, नहीं वैसे तो रहेगी, मतलब ये चार घंटे अपने जिसमें हम अपनी यारी दोस्ती में बहुत सारी बातें करने वाले हैं और आपको मैं बहुत बढ़िया वाला म्यूजिक सुनाने वाली हूँ। अब यारी दोस्ती के नाते हाल पूछना तो बनता है, बताओ आपका आज का दिन कैसा रहा और आप कैसे हैं? किसी ने आपको परेशान तो नहीं किया? अरे बता देना यार, 3311063 पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। परेशान से ज्यादा आजकल मैं बिग बॉस बहुत ज्यादा देख रही हूँ, तो उसमें नकुल ढुल जो है वो हरियाणवी लड़के ओहो भाई आए हैं, तो एक ही अभी थोड़ा लास्ट के 15 मिनट के एपिसोड में ही दिखाए गए थे भाई साहब, सब लोग बिग बॉस के लोग जो है वो डर गए हैं देख के, एकदम दहशत में आ गए हैं, वो लड़का भी समझ नहीं लग रहा है। सो या मजा आने वाला है, अभी फिलहाल बिग बॉस जो देख रहे हैं उनको तो मजे आ रहे होंगे, जो लोग मतलब वो मेरी बात को समझ रहे होंगे जो देख रहे हैं। सो या अभी के लिए ज्यादा दिमाग मत लगाइए, क्योंकि सिमरन कौर दिमाग वाले ना तो काम करती है ना दिमाग लगाती है, और जब कोई सिमरन कौर पे दिमाग लगाता है ना तो सिमरन कौर परेशान हो जाती है यार।

0: Qatar's number one radio station. Radio Olive 106.3 FM. Jio Bindaas. टफ काम और भी आसान। कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्मल ग्रुप नाउ।
1: पे जस्ट 10% एडवांस एट जॉया लुकास टू बुक योर फेवरेट ज्वेलरी नाउ।
2: नाउ वी स्टिल हैव टाइम फॉर द फेस्टिव सीजन।
1: दैट्स एग्जैक्टली व्हाई यू शुड सिक्योर द बेस्ट गोल्ड राइट नाउ। बुक इन एडवांस एट जॉया लुकास एंड प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम गोल्ड प्राइस हाइक्स। प्लस इफ द गोल्ड प्राइस ड्रॉप्स यू गेट द लोवेस्ट रेट। एंड द बेस्ट पार्ट, यू कैन डू with in-store or with just a click on the Jaya Lucas app. Advanced booking offers valid until 7th November only. Jaya Lucas, world's favorite jeweler.
3: It's back. LG and Jumbo's mega promotion. Assured gift vouchers on every purchase of LG appliances, ACs, gaming monitors, TVs and audio products. Avail up to 3 years extended warranty, Mukafa loyalty points, Nujum, Air Miles and Avios.
4: Visit today at LG Brand Shop, Jumbo Store and JS.QA. Hurry, offer valid till 19th October.
5: Hi there friends, this is DJ Suketu. You're listening to Radio Olive 106.3 FM, Jio Bindaas.
0: Olive Suno Radio Network, Qatar's number one Asian radio network.
6: Radio Olive, I'm the number one.
7: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय, मलाई मार के। भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त। कतर की नंबर वन आरजे
8: सिमरन के साथ
9: जबरदस्त इवनिंग। मेक यू ड्राइव गोल्डन विद
10: बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जॉया लुकास। जॉया लुकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
11: लुलु, हाइपरमार्केट्स, सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

संजी मैं तेरी हीरोइन नंबर वन, तेरी नहीं मैं हीरोइन नंबर वन, सीधी सी बात है यार। बोलेगा ना यार 5:22 16 सेकंड स्टूडियो की घड़ी पे सिमरन कौर आओगे ज्यादा।

0: मौसम हमको अपना बना रहे हैं।
1: मौसम आपके सुनो,
0: देखो मैं सीधा मौसम से बात कर रही हूँ। देखो आप लोगों के पास अगले 2 दिन बचे हुए हैं, तो अपने आप को प्रूव कर दो, क्योंकि इस बार बोला था कि बारिश जो है वो 14 तारीख तक के बीच में चांसेस हैं, तो अभी तक मुझे किसी भी तरह का कोई भी आसार जो है वो नजर नहीं आ रहा है बारिश का। सो अभी के लिए 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है एंड फील्स लाइक 34 डिग्री सेल्सियस एंड मिनिमम टेम्परेचर जो है वो है आज का 30 डिग्री सेल्सियस, विंड 13 किलोमीटर पर आर की रफ्तार से चल रही है, ह्यूमिडिटी पहले से थोड़ी कम है 50%। सिमरन गौरे आओगी साथ जियो बिंदास।
2: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

जॉन हर्षदीप कौर दिया यार, क्या फिल्म थी यार, डोंट टेल मी कि आप लोगों ने सुल्तान फिल्म नहीं देखी, क्यों नहीं देखी यार, सलमान खान नाराज हो जाएंगे यार। मैं क्या चीज सुनियो कि दादी की हाल चाल, सत श्री अकाल, सिमरन कौर है तोड़े नाल। इसका पता नहीं पर मैं 9 बजे से पहले छोड़

गाइस अभी तो फिलहाल मैं अभी हूँ यहाँ पर और कोरियन कल्चर वीक जो है वो भी है आपके लिए, जो कि 16th अक्टूबर से स्टार्ट होने वाला है, 24th ऑफ अक्टूबर तक ये चलने वाला है। अलग अलग जगह पे अलग अलग एक्टिविटीज जो है वो होने वाली है। सो अगर मैं बात करूँ कोरियन शॉपिंग फेस्टिवल की, ये 22 से लेकर 24 अक्टूबर के बीच में सिटी सेंटर मॉल में होने वाला है, जहाँ पर जो है वो आपके लिए बहुत कुछ होने वाला है, यानी कि कोरियन फूड, कोरियन ब्यूटी प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, लाइफस्टाइल गुड्स, सो कुल मिला के 40 कोरियन कंपनी जो है वो आपके लिए यहाँ पर होने वाली है। और आप जो है वो, हम लोग ऐसे पगलू है फिरते हैं ना आजकल कोरियन सीरीज की, वो तो नहीं, लेकिन कोरियन स्किन आपको जरूर मिल सकती है, आपके फेवरेट वाले प्रोडक्ट्स जो है वो आपको जरूर मिल सकते हैं। सो या सिमरन गौरे आपके साथ, जियो बिंदास।

0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM. Jio Bindas.
1: टफ काम और भी आसान, कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्मल ग्रुप नाउ।
2: अपने लव्ड वंस को पैसे भेजना हुआ और भी इजी। कतर में पहली बार अलदार एक्सचेंज लाया है वीजा डायरेक्ट, जिससे पैसे सीधा फैमिली के बैंक अकाउंट में। फास्ट, इजी और रिलायबल। विजिट कीजिए अलदार की 38 ब्रांचेस या डाउनलोड कीजिए अलदार एक्सचेंज ऐप नाउ।
3: Kafa loyalty points, Mijum, Air Miles and Avios.
2: Visit today at LG Brand Shop, Jumbo Store and JS.QA. Hurry, offer valid till 19th October.
4: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय, मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त। कतर की नंबर वन आरजे,
5: आरजे सिमरन के साथ।
6: Zabardast evening, make you drive golden with.
7: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
8: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop. Just

Gergyar. कि उस होता है ना कि जैसे सिचुएशन जो आप बता रहे हैं लास्ट के म्यूजिक में लास्ट का जो एक आधे मिनट का म्यूजिक बजता है ना, ओहो वो एकदम गाने के हिसाब से जा रहा होता है यार। 6:07 और 50 सेकंड स्टूडियो की घड़ी पे

0: grandio. लगड़ी है और बताओ क्या हाल चाल है, सब बढ़िया चल रहा है लाइफ में? देखो अब आज वायरल में कौन सी चीज है, अगर आपको नहीं पता थी तो अब पता लग जाएगी।
1: रेडियो ऑलिव पर व्हाट द वायरल, क्या बात है, आरजे सिमरन के साथ व्हाट द वायरल, ये बात है।
0: और सुबह से लेगी आज सैफ अली खान जो है वो चर्चा में, क्योंकि वो अब इंस्टाग्राम पे आ चुके हैं। तो जब मैंने उनका, मेरे को पता लगा था, मैंने उनका इंस्टाग्राम देखा तब 8K समथिंग थे, और थोड़ी देर पहले मैंने देखा था वो 35K समथिंग थे, और अब अगर मैं देख रही हूँ तो 46.8K जो है वो उनके फॉलोअर्स हो चुके हैं। इनके वैसे काफी सारे फैन पेजेस वगैरह बने हुए हैं, लेकिन जो इनका ऑफिशियल अकाउंट है वो सैफ अली खान पटौदी, आप जाके देखिएगा और फॉलो कर लीजिएगा। कमाल के एक्टर है यार, मतलब मुझे उनकी पहले वाली फिल्म्स याद नहीं है, जो अभी पिछले कुछ सालों में उन्होंने एक्टिंग करी है और पिछले कुछ सालों में उन्होंने जो यू नो कॉन्सेप्ट चूज किए हैं वो मतलब काबिले तारीफ है यार। सिमरन कौर आपके साथ, जियो बिंदास।

0: सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: Fresh on the grill, slow cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama. Just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience, served with pride. Danadal Bahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif, Alkhol.
2: Huh? Free cash vouchers on diamond jewelry? Seriously, Mahi?
3: Yes, Bebo.
2: सिर्फ 25% पे करके गोल्ड प्राइस लॉक कर सकती हूँ?
3: Yes.
2: कैच क्या है?
3: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स के साथ सेलिब्रेशंस को और भी खास बनाओ. डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेसेस पर पाओ फ्री कैश वाउचर्स और सिर्फ 25% पे करके गोल्ड रेट को ब्लॉक कर दो.
2: आई स्टिल कांट बिलीव इट. नो कैच.
3: कैचेस सिर्फ मैचेस में होते हैं बेबो. दिस इज योर फेस्टिव गिफ्ट फ्रॉम मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स.
4: बाइंग न्यू ग्लासेस गेट अप टू 100% पे बैक ऑफर एट अल्फला ऑप्टिक्स. Find this and more offers on Savify. Visit Savify.co today.
5: Hi guys, this is Jurita Gandhi. Radio Olive, I'm a number one. You are listening to me on Radio Olive. Gio Bindas. Radio
6: Olive, I'm a number one. Olive Suno Radio Network. Qatar's number one Asian radio network.
7: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के. तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे सिमरन के
8: साथ. Zabardast evening, make your drive golden with.
9: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
10: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

0: அஞ்சி கால சஷ்மா ஜட்சுதாய் ஜட்சுதாய் குறை முகத்து और स्पेशली ये जो काला चश्मा है सर्दियों की धूप में बड़ा सही लगता है यार। 6:18 और 42 सेकंड जो है वो स्टूडियो की घड़ी पे हो चुके हैं। याद आ रही है किसी की? ठीक है, आ जाएंगे उसको बहुत सारे। अगर आपको प्यार है ड्रिफ्ट शो का तो मॉल ऑफ कतर में एक बार फिर से ड्रिफ्ट शो जो है वो आने वाला है। और ये कब होने वाला है? ये 28 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक होने वाला है। सो लास्ट टाइम मुझे याद है कि ये हम सभी आरजेस गए थे ड्रिफ्ट शो में और गाड़ी में बैठ गए, इधर उधर घुमाते हैं भाई गाड़ी, बड़ा मजा, बढ़िया वाला एक्सपीरियंस रहा था। सो अगर लाइफ में आपने ये एक्सपीरियंस नहीं किया है तो इस बार जरूर करिएगा इस ड्रिफ्ट शो के लिए, है ना, मॉल ऑफ कतर में जो होने वाला है। सो मजेदार माहौल, डरने की बात नहीं है, साथ में वो एक्सपीरियंस जो है ना वो ड्राइवर वो रहते हैं साथ में, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आपको बस हेलमेट पहन के वहां पे बैठना होता है और मतलब एंजॉय करना होता है, एकदम फास्ट स्पीड में गाड़ी चलती है। सिमरन गौरी आपके साथ, जियो बिंदास
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है।

0: हिट सिमरन कौर थोड़े नाल ये याद और ये शाम
1: मस्तानी मदहोश किए जा
0: बस थोड़ी देर में
2: Gen Z
3: decoded.
0: ऐसा है क्या? एक टर्म बहुत ज्यादा यूज कर रही जा रही है आजकल डीप फेक. जी हाँ, जब कोई फोटो या वीडियो जो है वो AI से जो है AI टेक्नोलॉजी के साथ उसको जो है वो चेंज कर दिया जाता है, किसी का फेस किसी पे लगा दिया जाता है, तो इससे बहुत सारा मतलब टेक्निकली ये एक स्कैम होता है. सो या इसको आप जो है अब डीप फेक का नाम जो है वो दे सकते हैं. बहुत सारे सेलिब्रिटीज और बहुत सारे नॉर्मल जनता जो है इस चीज की वजह से डीप फेक की वजह से सफर किए हैं. तो सोशल मीडिया भाई डरावनी चीज भी है यार. 2-1 एंड गो.
4: हर घड़ी हर पल मुझे बस है.

अरिजीत सिंह, फलक मुछाल की आवाज और अब जो है वो आप बीच वेयर के साथ जो है तैयार हो जाइए, क्योंकि ये अभी लास्ट ही एक तरीके से मौका है, फिर थोड़े टाइम में मौसम बदल जाएगा। फेस्टिवल ऑफ वेकेशन एंड फन जो है वो होने वाला है 974 बीच पे। जी हाँ, ये वेकेशन जो है वो आप अपने इधर कतर में ही ले सकते हैं, और ये बीच पे आप वेकेशन ले सकते हैं जिसमें फैमिली फ्रेंडली माहौल जो है वो होने वाला है। सो टिकट्स ऑफ कोर्स इसके लिए आपको खरीदनी पड़ेंगी, वो ले लीजिएगा और इसको फन को आप कर लीजिएगा। फिर जब सर्दी आ गई फिर तो गर्मा गर्म पानी से नहाने का ही मौका मिलेगा, और बाहर जाके तो फिर जैकेट वैकेट पहन के घूमने

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: It's back. LG and Jumbo's mega promotion. Assured gift vouchers on every purchase of LG appliances, ACs, gaming monitors, TVs and audio products. Avail up to 3 years extended warranty, Mukafa loyalty points, Nujum, Air Miles and Avios.
2: Visit today at LG Brand Shop, Jumbo Store and JS.QA. Hurry, offer valid till 19th October.
3: Buying new glasses? Get up to 100% payback offer at Alfala Optics. Find this and more offers on Savify. Visit savify.co today.
4: टफ काम और भी आसान कार्नल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स एक्सकेवेटर्स और

So, तेरे नाम फिल्म जब आई थी बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि ये सलमान खान की और ऐश्वर्या राय के ऊपर रियल स्टोरी जो है बनाई गई है, लेकिन ये फिल्म की रियल स्टोरी थी लेकिन सलमान और ऐश्वर्या पे नहीं थी। ये एक्चुअली जो राइटर थे उन्होंने उनके दोस्त का ये रियल इंसिडेंट था, वो लड़की के किसी प्यार में पड़ जाते और इस तरह की सिचुएशन होती है। सो ये रियल लाइफ स्टोरी थी। एंड फिल्म की बात करें तो इस फिल्म की एडवांस बुकिंग जो थी ना वो बेस्ट एवर थी इन 5 years, जी हाँ, उस टाइम पे। और सलमान खान ने अपनी परफॉर्मेंस की वजह से इतने सारे जो है वो क्या कहते हैं कि नॉमिनेशन जो थे इस एक्टिंग के लिए लिया थी, क्योंकि इनके करियर की ये एक बेस्ट फिल्म जो है वो मानी जाती है। और भी वैसे उन्होंने बेस्ट फिल्म की है लेकिन ये उनमें से एक है जिसमें इन्होंने बेस्ट एक्टिंग की है। और उनके हेयर स्टाइल की तो क्या ही चर्चे, आज तक भी हम बोलते हैं ना अरे तेरे नाम जैसा हेयर स्टाइल बना दिया। उस टाइम पे बहुत सारे लड़कों ने सलमान खान वाला हेयर कट लिया था यार। सो और भी बातें बताऊंगी इस फिल्म के बारे में, सुनते रहिए रेडियो ऑलिव और कहते रहिए जियो बिंदास। ये नई फिल्म है प्रेम कीटाणु से, गाना तुझसे बिछड़ के, वाह फीले।

0: टफ काम और भी आसान। कार्मल ग्रुप लाया है शैंटूई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्मल ग्रुप नाउ।
1: Fresh fish on the grill, slow cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama. Just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience, served with pride. Danadal Pahar, the ultimate Katri adventure. Souk Waqif, Alkhol.
2: नमस्कार, मैं हूँ आर माधवन।
3: हाय, दिस इज विपाशा बासु।
4: हाय, आई एम राजकुमार राव।
5: हाय, मैं हूँ प्रियंका चोपड़ा।
6: हाय, दिस इज दिशा पांडे।
2: आप सुन रहे हैं रेडियो ओनली 106.3 एफएम।
7: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त। गदर की नंबर वन आरजे,
8: आरजे सिमरन के साथ।
1: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद। बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
9: लुलू, हाइपरमार्केट्स, सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

दादी की हालचाल, सत श्री अकाल, सिमरन कौर आपके साथ। और आज हम बात कर रहे हैं तेरे नाम फिल्म के बारे में। सलमान खान ने फिल्म के फर्स्ट हाफ में जो उनका वो हेयर स्टाइल था ना, उसमें उन्होंने वो विग पहना था, वो जो बीच में मांग बनी रहती है सलमान खान तेरे नाम वाले, है ना। सो वो आजकल लोग जो है बोलते हैं उस हेयर स्टाइल के लिए। लेकिन सलमान खान जो थे उस टाइम पे उनके सर पे एक भी बाल नहीं था, उन्होंने अपना पूरा जो सर था वो हेड था वो शेव करवाया था, क्योंकि 2002 में उनको हेयर ट्रांसप्लांट करवाना था। तो उसके लिए वो एक्चुअली उनको फिल्म के लिए भी वैसे ही लुक चाहिए था, तो उनकी ऐसी लुक के लिए बहुत सारे लोगों ने उनको तारीफ भी की थी कि अच्छा लग रहा था उन पे वो वाला लुक जो है, उनके कैरेक्टर के हिसाब से वो अच्छा लग रहा था। बट सलमान खान जब ये फिल्म कर रहे थे ना, तो उनको बहुत ज़्यादा डर लगा। उन्होंने बोला कि भाई यू नो क्या होता है कि जब आपको कोई फेवरेट स्टार होता है, तो जब भी वो जिस तरह की बात कर रहा है, जिस तरह की रोल कर रहा है, जो लोग जो है ना, उनके फैंस जो है ना, वो कभी कभी अपना दिमाग नहीं लगाते, उन्हीं की तरह चीज़ें करने की और फॉलो करने की कोशिश करते हो। सलमान खान को बहुत डर लगा था कि भाई ये जो मेरी एक्टिंग है और ये जो फिल्म में मेरा कैरेक्टर है, कहीं लोग उसे फालतू का इंस्पायर्ड मत हो जाए, कि भाई ज़रूरत नहीं है। इसीलिए उन्होंने इंटरव्यू में कहना, प्रमोशन के दौरान कहना स्टार्ट कर दिया था कि भाई ये एक कैरेक्टर है और इसको बिल्कुल भी जो है वो आपको नहीं करना, और मैंने सिर्फ ये एक कैरेक्टर ही किया है। सो या तेरे नाम फिल्म बहुत ही कमाल की फिल्म है, एंड मूड थोड़ा सा लाइट करते हैं।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: फ्री कैश वाउचर्स ऑन डायमंड ज्वेलरी? सीरियसली माही?
2: यस बेबो,
1: सिर्फ 25% पे करके गोल्ड प्राइस लॉक कर सकती हूँ।
2: यस,
1: कैच क्या है?
2: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स के साथ सेलिब्रेशंस को और भी खास बनाओ। डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेसेस पर पाओ फ्री कैश वाउचर्स और सिर्फ 25% पे करके गोल्ड रेट को ब्लॉक कर दो।
1: आई स्टिल कांट बिलीव इट, नो कैच।
2: कैचेस सिर्फ मैचेस में होते हैं बेबो। दिस इज योर फेस्टिव गिफ्ट फ्रॉम मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स।
3: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त गदर की नंबर वन आरजे
4: आरजे सिमरन के साथ।
5: Zabardast evening, make you drive golden with.
6: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
7: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop. Just

0: ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ? ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਿਮਰਨ ਕੌਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮ ਥੋੜਾ ਸਾ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਯਾਰ।
1: ਰੇਡੀਓ ਓਲਿਵ ਪਰ ਆਰਜੇ ਸਿਮਰਨ ਕੇ ਸਾਥ।
0: लाइफ में ना एक चीज जितनी जल्दी आप समझ जाएंगे ना, उतनी जल्दी हमारे आधे से ज्यादा जिंदगी के दुख जो है ना वो खत्म हो जाएंगी। कोई भी चीज जो है ना वो परमानेंट आपके लिए नहीं होती है। लोग स्विच करते हैं, फीलिंग्स लोगों की मरती हैं, प्रॉमिसेस जो है वो एक्सपायर हो जाते हैं, और ऐसा नहीं है कि कोई आपको लाइफ में छोड़ के नहीं जाएगा। लाइफ में छोड़ के चले जाते हैं, फिर क्या होता है कि आप जो जिस इंसान के लिए ऑक्सीजन बने रहते हो, उसके बाद आप ही का दम जो है वो घुटता है। सो उसके बाद आप फंक्शन नहीं कर पाते हो, काम नहीं कर पाते हो, खा नहीं पाते हो, अच्छे से सो नहीं पाते हो। आपका दिमाग जो है वो एकदम उसी चीज में, उसी पिंजरे में जो है वो फंसा रहता है। तो ये इन सारी चीजों का इलाज पता क्या है? डिटैचमेंट। आप रहो लोगों के साथ, लेकिन इतना भी ज्यादा अटैच मत हो कि कल को अगर वो आपकी जिंदगी में इंसान नहीं है तो भाई ये सांसें वहां से रुक जाए।
2: मदहोश दिल की धड़कन, चुपसी तन्हाई।
0: And I know, ये कहना बहुत आसान है, करना मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है दोस्त। सो या सुंदर रेडियो ऑलिव कोर के दरो जियो बिंदा। वापस लौट के रेम गेम खेल

0: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: Fresh on the grill, slow cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama. Just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience. Serve with pride. Danadal Bahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif Alkhol.
2: टफ काम और भी आसान, कार्नल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्नल ग्रुप नाउ।
3: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त। कतर की नंबर वन आरजे,
4: आरजे सिमरन के साथ।
5: Zabardast evening, make you drive golden with.
6: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
7: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

चलो फिर नाम लेने थोड़ा सो रूल जिनको नहीं पता जो मुझे पहली बार सुन रहे हैं उनको मैं बता देती हूँ, आप मुझे सुन रहे हैं बहुत बढ़िया बात है। अब आप मुझे अपना नाम लिख के व्हाट्सएप करके भेज दीजिए और अगर आपका नाम मुझे मेरी व्हाट्सएप स्क्रीन पे दिखा तो मैं आपका नाम अभी के अभी बोल दूंगी। तो मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 3311063। जी हाँ, 3311063। इस नंबर पे सिर्फ और सिर्फ आप अपना नाम लिख के भेजिए। शाबाज जी, सबेसाची जी, अदील जी, आसमा जी, आबिद जी, इदरीस जी, मैनुद्दीन जी, फहीम जी, संतोष जी, पंकज जी, एक और संतोष जी, पंकज ऑलरेडी नाम ले रहे हैं, नईम जी, थैंक यू सो मच, यासीन जी, थैंक यू सो मच, संधु साहब, थैंक यू सो मच, असलम जी, बहुत बहुत शुक्रिया, शशिकांत जी, थैंक यू सो मच, अब्रार जी, बहुत बहुत शुक्रिया, हाजरा जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। दोस्त हाय क्या होता है, नाम लिखो यार। वृशाली जी, थैंक यू सो मच, मोहम्मद वसीफ, असद जी, थैंक यू सो मच, आमिर जी, थैंक यू सो मच, अशफाक तालिब हुसैन जी, थैंक यू सो मच, रॉबर्ट जी, थैंक यू सो मच, हुजैफा जी, थैंक यू सो मच, सना सईद जी, थैंक यू सो मच, शाबाज गुल जी, थैंक यू सो मच, वृशांक जी, थैंक यू सो मच, वृशांक आई होप मैं आपका नाम सही ले रही हूँ, अतराबाज जी, थैंक यू सो मच, संदीप जी, थैंक यू सो मच, मोहम्मद वसीफ जी, बहुत बहुत शुक्रिया, वरीजा, थैंक यू सो मच, आई होप आपका नाम भी मैंने सही ले लिया है, नितेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया, जुल्फिकार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके मैसेज के लिए। क्विकली नाम लिखिए, अगला गाना शुरू होने वाला है 3311063 पर। निराजा जी, थैंक यू सो मच, कार्तिक जी, बहुत बहुत शुक्रिया, उमेश जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, अब्बास जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, हारून जी, थैंक यू सो मच, वृशीन जी, थैंक यू सो मच आपके, ये सच्ची में आप सबके नाम है कि आप मजाक ले रहे हो? वृशांक, वृशाली, ये इतने सारे नाम, इतने सारे बच्चे इकट्ठे बैठे मुझे सुन रहे हैं क्या यार? सुंदर ये रेडियो ऑलिव गोर के जरिए जियो विंदाज, और अगर आपने अपना नाम सुन लिया तो अपना फेवरेट वाला ही मुझे बनाओ। हाय, ये गाना जान लेके छोड़ेगा मेरी।

0: अपने लव्ड वंस को पैसे भेजना हुआ और भी इजी। कतर में पहली बार अलदार एक्सचेंज लाया है वीजा डायरेक्ट, जिससे पैसे सीधा फैमिली के बैंक अकाउंट में, फास्ट, इजी और रिलायबल। विजिट कीजिए अलदार की 38 ब्रांचेस या डाउनलोड कीजिए अलदार एक्सचेंज ऐप नाउ।
1: यू आर लिसनिंग टू कतर्स नंबर वन रेडियो स्टेशन, रेडियो ओलिव 106.3 FM, जियो बिंदास।

0: है दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त, कतर की नंबर वन आरजे सिमरन के
1: साथ। Zabardast evening, make you drive golden with. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
2: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop. Just

0: बढ़िया बहुत बढ़िया।
1: चलो बताओ ये कौन सा गाना है। इसके बाद तो लिरिक्स आ जाते हैं यार। बताओ ये कौन सा गाना आपको लग रहा है। सो गा के बताना है या बोल के बताना है अप टू यू। बस वॉइस नोट भेजना डार्लिंग, मुझे आपकी आवाज सुननी है। आप अपना नाम बताइए, गाने का नाम बताइए, गाना गा के बताइए, आपकी मर्जी है। और भेज दीजिए 3311063 पर। लेकिन एक रिक्वेस्ट है, ऐसे मत जवाब देना हेलो सिमरन ये गाना मैं नहीं, मंगा मजा नहीं आता ऐसे सुनने में। लेकिन हे सिमरन ऐसे करके ठीक है, फिर अपना नाम बताना, एकदम सिमरन कौर वाली एनर्जी होनी चाहिए। और भेज देना 3311063 पर। बार चन्न दिख रहे हैं।

0: ਸੁਣਿਓ ਕਿ ਤਾਂ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਿਮਰਨ ਕੌਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਔਰ ਹਮ ਖੇਲ ਰਹੇ ਹਾਂ
1: ਰੇਡੀਓ ਓਲਿਵ ਪਰ
2: ਬਹੁਤ ਬਣਿਆ ਬਹੁਤ ਬਣਿਆ
0: ਔਰ ਇਹ ਥਾ गाना कौन सा बताओ
3: हेलो सिमरन दिस सॉन्ग इज दो दिल
0: है?
3: मिल रहे हैं दो दिल मिल रहे हैं मगर चुप के सबको हो रही है सबको हो रही है कबर चुपके
0: तो नहीं सबको खबर होगी कि गाना गलत है यार रणबीर कपूर नाराज हो जाएंगे आपसे ये था गाना दोस्त थोड़ी देर में आएगा लेकिन चांद नजर आ रहे हैं क्या
4: मेरा चांद मुझे
0: आपके लिए रखे हैं मैंने
4: ओ सोनिए तेरा मेरा साथी उही रहना
0: सुंदरी रेडियो ऑलिव गोर के देखिए जियो

0: ਬਣੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ
1: लेकिन जाने से पहले शो के दो गाने आखिरी वाले

चलो कोई बात नहीं, बाकी कल शाम को 5 बजे आगे वापस से बातें करती हूँ आपसे बहुत सारी. अभी के लिए ओवरथिंकिंग मत करिएगा, ठीक है? खांदे पिंदे रहो, ऐश कर दे रहो, चेहरे दे वड्डे वाली स्माइल रखो, किसी का दिल मत दुखाना. बी नाइस टू एवरीवन यार. गुड नाइट, जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड लव यू सर्किलो.

सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। अपने लव्ड वंस को पैसे भेजना हुआ और भी इजी। कतर में पहली बार हल्दार एक्सचेंज लाया है वीजा डायरेक्ट, जिससे पैसे सीधा फैमिली के बैंक अकाउंट में। फास्ट, इजी और रिलायबल। विजिट कीजिए हल्दार की 38 ब्रांचेस या डाउनलोड कीजिए हल्दार एक्सचेंज ऐप नाउ।

लोग सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM. आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.

आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।

भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे सिमरन के साथ जबरदस्त इवनिंग वो शाम 5 से 9 ओनली ऑन 106.3 रेडियो ऑलिव जियो।

सिर्फ नंबर वन लोग सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.

listening to Radio Olive 106.3 FM. आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.

सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।

सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।

are listening to Radio Olive 106.3 FM Jio Bindas. अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है, जबरदस्त है।

0: चांदनी रातें, चांदनी रातें।
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

सिर्फ नंबर वन लोग सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.

सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास

सिर्फ नंबर वन लोग सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.

Kolkata's number one radio station. Radio Olive 106.3 FM. Jio Bindas. अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।